0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, मालिक जो महबूब मोहम्मद को ने देखा।

दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त करो।

पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद हैदर।

अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई देखी आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन दरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आ

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125252786
6: जी हाँ 2315525786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना बस।
2: क्या बारान दिफाई मुआहदे ते सही कोई आए दिफाई मुआहदो जाहिर करे तो विच ओभर मुतह थी रो है उहे मुल्क सराय ते नमूने पंहिंजो दिफ़ा करण जे क़ाबिल हूंदा आहिनि। पाकिस्तान तुर्किया ऐं सऊदी अरब पारां 7 अगस्त ते मके दिफ़ाई मुआहदे ते सहियूं कयूं वयूं, जंहिं तहत कंहिं हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो समझो वेंदो।

इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में बरसातनि तबाही मचाए छॾी। पेर वधाई वारे इलाइक़े पाणी हेठि अची विया। ॿुॾल कुटुंबनि पारां हुकूमत खे मदद जी अपील। रेस्क्यू टीमनि पाणीअ में हिकु घर में फाथल चार माण्हुनि खे बचाए वरितो। रेन एमरजेंसी लागू। पाणीअ में चार सबब खतरे जा सायरन वॼाया विया। एम डी वासा अज़ीज़ उल्ला ख़ान चयो आहे त नालाली में गवामिंडी वटि पाणी जी सतह 17 फुट ऐं कटियारियां वटि 20 फुट ते पहुची वई आहे। शहरनि खे हेठियनि वारे इलाइक़नि ऐं नालाली खां परे रहण ऐं फौरी तौर इलाइक़ो ख़ाली करण जूं हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि।

0: सिंध असेंबली के तक पीएसटी गंबट सोबो देरो में थियल नंडी चूंड में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर रसवंत जारखल 48,879 वोट खड़ी वही अक्सरियत से खटे वो आजाद उम्मीदवार सैयद तसवुर मेहंदी सिर्फ 1200 वोट 99 वोट खड़ी सगो तक के समूर 164 पोलिंग स्टेशन में मिले नतीजन मूजिब असवंत जार वाजे अक्सरियत से कामयाबी माणी है 48,986 वोट हासिल कया सैयद तसवुर मेहंदी हसन शाह 1299 वोट खड़ी बे नंबर से मोहम्मद मूसा बुरड़ो 702 वोट खड़ी टे नंबर से रो आजाद उम्मीदवार गुलाम अली उजन बे सिर्फ 408 वोट खड़ी सको नतीजा मुकम्मिल थे बाद रिटर्निंग ऑफिसर फारम 47 जारी कर चूंडन दौरान वोटन जो टर्न आउट 20.53 सैकड़ो रो 2,54,980 रजिस्टर्ड वोटर्स में सिर्फ 52,355 वोटर्स वोट जो आईनी हक इस्तेमाल कयो
1: थे और अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने हिस्से का सिंध लाए थे जिसको बतरू का सिंध कहा जाता है। जनाब सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहां। वो बतरू का सिंध वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
2: आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो लोग, नाराज उनसे हो जो ये जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें।
3: पाकिस्तान की बकाया अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के बगैर नामुमकिन है।
0: मुल्क बचाने जो वाहिद तरीको इंतजामी यूनिट्स ठाण है नवा सूबा ठाण गद्दारी है तो यह गाल आईन में खत्म छो न कई वही नवन सूबन के मुतालबे लाए एमक्यूएम अगवाणन के गरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल को सदीकी चयो तो नवा सूबा मुतालबो न पर वक्त की घुर्ज है असा के सूबन वारी तजवीज में पूरे मुल्क में आवाज उथी रो है सिंध में लडे वयल हिंदुन जो 60% जमीनों असाजू आन सिंधन की मेहरबानी जो ईं भी मल्हाइंदी फारूक सत्तार तो मुल्क की सलामती नवा इंतजामी यूनिट ठाण में मुस्तफा कमाल चयो तो पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वेटो क्यू इंतजामी यूनिट सा सिंध जा हारी भी आजाद थींदा सिंध के माण्हुनि जी हालत बदतर ही ना है बहराड़ी में जिते कुत्ता पानी पियन था औरतूं उतां पानी भरण ते मजबूर आहिनि।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257866।
5: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।
3: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257 86।
5: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: स्क्रीनो
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान तुर्किया सऊदी अरब पारा 7 अगस्त ते मके दिफाई मुआहदे ते सहियूं कयूं वयूं जंहिं तहत कंहिं हिकु मुल्क ते हमलो टिन्ही मुल्कनि ते हमलो समझो वेंदो।

पार्लियामेंटी अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक जी सदारत हेठि थियो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास अॼु 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबति मुशावरत कई वेंदी। घरू वज़ारत जे मातहत समूरनि सरबराहनि जो घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गॾियल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर कयो वियो। मोहसिन नकवी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कमु ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटी ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो क़त्ल केस जे जवाबदारनि जी वरियत खिलाफ़ अपीलनि ते ॿुधणी वकील आगाही ॾिनी त केस

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, इसमें जहां पे जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बेटर लगते हैं अगर अपनी गाड़ी में अपनी किसी की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बबल ने दाखिल दिए थे मौजूदा तो वक्त ने भी दाखिल दिए थे मतलब लोगों की सालगिरह हमको कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जी हजारों साल और हमेशा जीत रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, जो लोग लाइफ में कुछ अलग कुछ डिफरेंट कुछ बेटर कर रहे हैं विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेज। सब मेरी आवाज जिन जिन दुनिया शहरों शहर शराबों वाले दुनिया पहाड़ों दुनियाओं में गुजारो, घरों और बाजारों छोटी छोटी कारों मेरे पुरस्कारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आया नुसर बिस्मिल्लाह बोंजोर चानी हाउ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, सारी बातें करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, आप इस गाने के साथ ही आपको बताएंगे आगे चल के हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3241-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842
5: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4 पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
9: जी हा, 2131525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।
7: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
8: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की
10: ठीक है, और दूसरा कि रोने धोने वाला नहीं होता, वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाता है। अदरवाइज आपका गाना अगर बॉलीवुड हुआ या फिर रोने धोने वाला हुआ, मैं आपसे सुन तो लूंगी लेकिन प्ले नहीं करूंगी। ये इस सेगमेंट का होगा रूल, और सेम सेम कॉलर्स नॉट अलाउड। मैं चेक करूंगी कि कौन आ रहा है बार बार, ठीक है, और अगर जो बार बार आया उसकी मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी। पहले से बता रही हूँ, फिर ना कहिएगा बताया नहीं, मैं एक्स नहीं लगाऊंगी आउट करने में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हम चेक करेंगे कौन है, कहाँ से हमारे लाइन पे मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? कुर्बान भाई, कैसे? ठीक ठाक, आपकी आवाज से ज्यादा हवा की आवाज आ रही है, मुझे बताएं। हाँ, अब आवाज आ रही है, अच्छा सा गाना सुना दे हमें।
11: बिल्कुल,
10: ओके।
11: काम नहीं जा रहा मुझे में है

0: ओके किसी को डेडिकेट करना है
1: जी
0: किसको डेडिकेट करना है
1: काल के राशियारी अजी सोलंकी आई उनका पोए काठड़ी का गुलाम रसूल मरी अजी अजी दरबार
0: ओके थैंक यू सो मच बहुत सारा ख्याल रखना 03000131348 मेक श्योर आपका गाना रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा सा गाना होना चाहिए ना रोने धोने वाला होना चाहिए ना कोई और कंटेंट होना चाहिए मतलब बॉलीवुड कंटेंट के अलावा कोई भी कंटेंट हो प्ले कर दूंगी ठीक है तो इस बात का खास ख्याल रखते हुए नेक्स्ट कॉलर हेलो
2: हेलो मैम
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई कैसे ठीक ठाक अच्छा मुझे बताइएगा गाना लेकर आए हैं
2: नहीं लेकर तो नहीं आया जहन में है
0: जहन में है सुना दो फिर अच्छा सा होना चाहिए दुखी गाना नहीं होना चाहिए
2: नहीं बाबा दुखी नहीं सुनूंगा
0: ओके
2: बदले चाहे तुम बदलता रहे चाहे तुम पान से बदलता रहे मेरे प्यार का दिया यूं ही जलता रहे मेरे प्यार का दिया यूं ही जलता रहे ऋतु बदले चाहे तुम बदलता रहे
0: ओके ओके जी किसी को डेडिकेट करना है
2: नहीं किसी को डेडिकेट नहीं है पहले निकाली नहीं है
0: चलिए ठीक है फिर ये रहा आपका गाना इसको सुनिए एंजॉय कीजिए

रखिए जी, साथ साथ हम कॉलर्स को रिसीव करेंगे 03000113488 के ऊपर. एक और कॉलर, हेलो. ओके, हेलो हेलो. ओके जी, कोई है कोई नहीं है. ओके, कॉल भी ड्रॉप हो गई है. अब क्या किया जाए. वेरी बैड. एक और गाना प्ले करते हैं जी. गाने के साथ हम जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानब. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी कॉल्स को रिसीव करेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: सोना से है।
1: आप सुन रहे हैं TFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
4: जी हा, 03135525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

ओके थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच. अपने बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. 03000113488 इसके ऊपर कॉल करते हैं आप लोग मुझे. सो कॉल कीजिएगा और कर रहे हैं आप लोग.

साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं और नजीर खुसू और साथ साथ मौजूद है नजीर खुसू के कमेंट आए हैं जी अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं अब्दुल रजाक हमें कमेंट कर रहे हैं मुनव्वर अब्बास हमें सुन रहे हैं लाहौर से और मुनव्वर अब्बास लिखते हैं कि लाहौर से नाइस शो थैंक यू सो मच इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं अब्दुल रजाक वंस अगेन एंड बस ये कमेंट्स है अच्छा हाँ हम कॉल्स ले रहे थे नेक्स्ट कॉलर हम रिसीव करेंगे 03000 11 34 88 के ऊपर

आगे साथ साथ आज का जो टंग ट्विस्टर है वो आपसे शेयर करती जाती हूँ जी। आज का टंग ट्विस्टर ये है कि बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है। बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है जी। तो आज का टंग ट्विस्टर है बेसे, ठीक है। तो ये टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे और जब जो बंदा ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर बोलेगा वो विन करेगा हमारे इस सेगमेंट को। सो आप जरूर देखें, आप प्रैक्टिस करें एंड देन कॉल पे आए और फिर टंग ट्विस्टर बोलिए, ठीक है। हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

सऊदी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो। ॾखण एशिया में एटमी तबाही जो ख़तरो टारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो। अमून अवाम जी रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। वधीक दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु बलूचिस्तान जे इलाइक़े पुलिस ज़ाइक में ॻुझी इतलाह ते ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मारिजी विया, टे ज़ख़्मी थिया। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्दी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ़ को यार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं आईएडी ठाहिण जो सामान पिण हथु कयो वियो आहे।

अमरीकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमरीकी सदर चयो त सुठनि लाॻापनि सबब गॾियल फौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रम्प दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंट अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक जी सरहद ते थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक इजलास अॼु 4:00 वॻे

पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में कौमी असेंबली जे उनटीह एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबति मुशावरत कई वेंदी। घरू वज़ारत जे मातहत समूरनि सरबराहनि जे घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गडि॒यल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नकवी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कम ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बर वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटी ते असराइता ऐं गडि॒यल क़दम यकीनी बणाइनि। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो क़त्ल केस जे जवाबदारनि जी बरियत ख़िलाफ़ अपीलनि ते ॿुधणी वकील आगाही डि॒नी त केस जूं ॿ FIR आहिनि। हिकु केस में मरहूम पुलिस अहलकार शाहिद हयात बरी थी चुको आहे ऐं ॿिए केस में अपील आहे। अदालत वकील खां पुछियो त फरियादी जे मौत खां पोइ संदसि भाउ अपील दाख़िल करे सघे थो। वकील चयो त अहिड़ो सवाल नकीबुल्ला क़त्ल केस में कयो वियो, औलाद या बेवा जे बदिरां भाउ पारां केस जी पैरवी करण जो जवाज़ न आहे। अदालत ॿुधणी 6 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। मटियारी वेझो ज़मीन जे तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग, हिकु ॼणो क़त्ल थियण जा इतलाउ। शहादपुर थाणे जी हद KT स्टाफ वटि खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थी पियो, जहिड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में हिकु ॼणो क़त्ल थियण जा इतलाउ। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। खोड़ा भरिसां हिकु अणॼातल शख़्स जो लाश हथायो आहे। ॻोठ कोड़ो खां नबड़ो भरिसां लाड़काणो बाईपास वटां हिकु लाश हथायो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
9: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257 86।
5: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए. हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल की जा सकती है. सो आप लोग कॉल कीजिए. और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएंगे बबलू ने, नहीं कह के दिखाएंगे कि बबलू ने भुने बादाम भरी बोरी में, मेरा भी गलत हो गया सॉरी, बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. ठीक है, ये कहना है बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए, है ना. बहुत उलझा देने वाला टंग टेस्टर है. अब देखते हैं कि आज का टंग टेस्टर कौन कह पाता है. हेलो, ओके, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहां से?
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन कहां से?
1: जी एम बलोच जयपुर.
0: जी एम बलोच भाई, कैसे ठीक ठाक?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए?
0: मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं टंग टेस्टर सुना?
1: टंग टेस्टर सुना, लेकिन मसला ये कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ. जब तक ये मेरा फॉल्ट सही नहीं होगा ना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता.
0: क्या सही नहीं होगा?
1: मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मेरी वॉइस मैं खुद सुन रहा हूँ अपनी. ठीक है ना, जब तक ये फॉल्ट सही नहीं होगा मैं बड़ा वो डिस्टर्ब होता हूँ कि आप, मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ.
0: अच्छा, मतलब आपको आवाज वापस आ रही है आपकी, तो ये नेटवर्क का इशू, इसमें हमारा क्या कसूर है?
1: नहीं देखे, आप उसको एक मतलब ऑफ एयर करें, इसको ऑन एयर न करें. ऑफ एयर में मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है या नहीं. अगर नहीं सुनाई देती है तो आपकी तरफ से फॉल्ट है, क्योंकि जब तक आप इसको ऑन करते हो ना ये हेडफोन को, तो ये मेरी आवाज मुझे डबलिंग में आती है.
0: अच्छा, अब इशू क्या है आपको? आपने मतलब ये शिकायत कर ली, उसके बाद और कुछ कहेंगे?
1: नहीं सुने प्रोग्राम तो मैं डेली सुनता हूँ.
0: हाँ जी,
1: तो बहुत जाता है, काम कर मेरी कॉल भी जाती है
0: जी.
1: लेकिन है ना, मैं उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. मुझे पता है कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ,
0: लेकिन बात तो हो जाती है ना. अगर आपको आवाज डबल आ रही है, नहीं अगर आपको डबल आ रही है तो बाकी लिसनर्स पे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डबल आवाज आ रही है. सो हो सकता है कि नेटवर्क का कोई इशू हो, या कोई हेडफोन्स वगैरह, या फिर कोई फोन का इशू भी हो सकता है.
1: सो मैं आपको बताऊं,
0: कोई बात नहीं,
1: जितने भी नेटवर्क है ना, किसी में कोई शिकायत नहीं, मैं सब में कॉल करता हूँ. ठीक है ना, सिर्फ सक्कर नेटवर्क ऐसा है जिसमें मेरे को डर लगता है. मैं नैन साहब को कॉल कर सकता हूँ ना, आपको,
0: चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगर मैं इस कन्वर्सेशन में जरा आगे गई तो एक तो सेगमेंट का टाइम चला जाएगा, एंड दूसरा फिर ये जो आपको मतलब इतनी कोई ज्यादा कोई शिकायत है तो आप बस फिर सुने, आप फिर कॉल ना करें, यही कह सकती हूँ मैं. थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. आप मुझे डेली सुनते भी हैं, लेकिन कॉल के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आपका आवाज आपकी वापस आती है, तो हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, कोई हेडफोन्स लगाने का इशू, या कोई फोन में भी इशू हो सकता है कि आप किस फोन से कॉल मिला रहे हैं या किस जगह पे जाके ऐसी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ आजकल नेटवर्क के इशूज हैं, और हो सकता है कि ऐसा ही हो. ठीक है, क्योंकि अगर आपको आ रही है तो बाकी लिसनर्स को भी आनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: सरदार कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताओ सरदार के टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
2: बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे
0: में भरकर
2: बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने
0: बादाम
2: भरकर बंद बॉक्स में बंद.
0: वाओ, क्या क्या मतलब क्या स्पीड है, और क्या कैसे फ्लो में जा रही हो, क्या बात है. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ, अच्छी अच्छी खासी चीजों को ना नजर बड़ी जल्दी लगती है, तो माशाल्लाह कह देना चाहिए, है ना. سر درد
2: آ رہی ہے آپ کی آواز
0: آواز آ رہی ہے. اچھا کچھ اور کہنا ہے سر درد؟ تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھو اپنا, اللہ حافظ. اور یہ کیا آ گیا جو بھی آیا 03000113488 جس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے جو کہ آپ لوگ کر رہی ہیں. نیکسٹ کالر ہے وہ. ہیلو وعلیکم السلام. اوکے سلام کرتے ساتھ ہی کال چلی گئی ہے پانی میں. ایک اور کال لے کر آئیں گے پانی سے اوپر. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ کون
1: سفر بلوچ مورو سے.
0: سفر بلوچ مورو سے کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ.
0: میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ ٹنگ ٹوسٹنا بولیں گے؟ بول دیں. مشکل ہے. چلیں پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ. یہ سیگمنٹ ان لوگوں کے لیے جو ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے. اینڈ نیکسٹ کالر ہم دیکھیں گے کون ہے. آئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کال ڈراپ ہو رہی ہے. ویری بیڈ, نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری آواز کو. خیر ہم گانا سنیں گے, گانا انجوائے کریں گے. گانا میں پلے کرنے جا رہی ہوں فار دا ویری فرسٹ ٹائم بائی نوشہ فتح علی خان. سنیں گے انجوائے کریں گے آگے چلیں گے.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असानी एरिया हाई रिस्क है ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेजे वैक्सीन के लिए उम्र की हद कोने कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल के घट आज असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली से औरतुन के बीमारी की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन के मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वजे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
8: सुनते रहो GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
9: जी हाँ 2315525786।
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज।

Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार आकर मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैसेजेस, कमेंट्स और कॉल्स के थ्रू. सो मैसेजेस आप लोगों के बहुत सारे मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. हमारा सेगमेंट भी है जी, बोलो तो माने. ठीक है जी, तो बोलो तो माने में आप लोग करेंगे ये कि टंग ट्विस्टर कह के दिखाएंगे. अच्छा, साथ साथ आप लोगों के मुझे मैसेजेस और कमेंट्स भी रिसीव होते जा रहे हैं, तो विदाउट एनी डिले उन तमाम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं जो कि काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारा. ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि मैं साथ साथ एक अच्छा सा गाना भी प्ले कर लूं, और जब मैं अच्छे से गाने की तरफ देखती हूं तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आ जाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि इसमें से मैं कौन सा प्ले करूं. सो हम एक अच्छा सा गाना प्ले करेंगे, और वो जो अच्छा

हमारे साथ साथ आगे चलेंगे। अच्छा, हमें मैसेजेस बहुत सारे लोगों ने कर दिए हैं, हमें मैसेज कर दिया है जी, अल्लाह रखियो मेमन ने, अल्लाह रखियो मेमन कहते हैं कि जी, और मेरे बेटे खुर्शीद अली, सनाउला अताउला अली, विमा अली शेर और मोहम्मद हुसैन मेमन और क्यूट बेटी फातिमा बतूल एंड सईदा बतूल फ्रॉम लाड़काना सदरा मुस्कान को सलाम देते हैं और कहते हैं शो बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रही है, सो प्लीज मुरीद अब्बास का सॉन्ग प्ले कर दें। ओके ठीक है, मुरीद अब्बास का सॉन्ग सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, हमेशा की तरह सफदर बलोच हमें मैसेज कर रहे हैं, सफदर बलोच लिखते हैं कि शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू।

साहब जी, सब तो बलोच ने बहुत सारे शेर फेंक दिए हैं, थैंक यू सो मच शेर फेंकने के लिए। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सिंध की आवाज़, आरजे कैसी हो आप, सलामत रहें। हमेशा आपकी आवाज तो आती है मोबाइल पे, मेरी नहीं आती क्यों? आज भी थर्सडे की तरह। अच्छा कौन है आप? वही जो कॉल पे आए थे वही हैं आप या कोई और है? नाम तो लिख दिया करें ना।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार लास्ट लिंक में वापस आ चुके हैं जी. वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, यानी कि वक्त का मुकाबला सख्त हो रहा है.

0: साथ साथ हम चलते हैं जी आगे और शो की बहुत सारी कॉल्स हम रिसीव करेंगे 03000993488 के ऊपर। लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे और चेक करेंगे कि कौन है, कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। अरे इस दिल में और कौन है, मेहमा तुम ही तो।
0: अरे वाह,
1: अपने अल्ताफ बलो जाग जाने का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मशर की तशनगी से क्या खौफ है अल्ताफ, कौसर का जाम देगा मुझको इमाम मेरा। लोगो साहेब हुस्न की आमद है इंतजार, बाकी का सबक है जाने को सर से प्यार करो। अरे शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे, शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे, ये इल्जाम देकर न दीवाने को दार दार करो। मैं खाने से तेरे दर तक है मेरी मंजिल, तुम जो चाहो वही रास्ता अख्तियार करो। अरे हुदू के रूबर, अरे हुदू के रूबर उन्हें अपने अल्ताफ को शर्मसार करो। अरे कुछ भी न सही, अरे कुछ भी न सही, मेरी सदाकत का तो इतबार करो।
0: वाह क्या बात,
1: अल्लाह आपको अपने इज्जत में रखे, पलपन पाक के साए में रहे और जो न मांगो वो आपको मिल जाए। मदीने अली
0: सरकार, बहुत खूबसूरत दुआ और बहुत खूबसूरत बात। तो क्या बात है जी, क्या बात है। एंड इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम भी जा रहा है इख्तिताम की तरफ और आज में हमें मैसेज रिसीव हुआ है, गुड आफ्टरनून शो इज नाइस, यू हैव टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, ग्रीन बलोच मुरू खास से। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अल्लाह हाफिज करने वाली हूँ। और इसके अलावा इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं। रुखसार क्या हाल है आपका, शो में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मैं स्कूल पढ़ाई चल रही है और मामू की शादी है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और सिंधी शेरू प्ले करो मीरपुर खास से रुखसार मरी। थैंक यू सो मच रुखसार मरी, आपने हमें ज्वाइन किया। तो वहीं लास्ट मिलेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटा रही कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा। जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़।

मटियारी वेझो जमीन जे तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल। शाहदपुर थाणे जे हद केटी स्टाफ वटि कोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। झेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में हिकु भाउ कोसो मारिजी वियो, लाश अस्पताल मुंतकिल कई वई।

भाण सैदाबाद लग झांगारा में पीअण जे पाणीअ जो बोहरान संगीन समय माण्हुनि जो धरणो झांगारा एक्शन कमेटी जे सॾु ते समय ॻोठाणनि सेवण झांगारा रोड ते धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुजण बावजूद झांगारा वासी पाणीअ लाइ तड़पी रहिया आहिनि। करोड़ रुपियनि जी लागत सां मंज़ूर थियल आरो प्लांट खे यूसी चेयरमैन हलाइण लाइ तयार न आहे। टिनि ॾींहनि अंदरि पाणी जी खोट ख़तम न कई वई त इंडस हाईवे ते धरणो हणंदासीं। दड़ो जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरनि दवाउनि ऐं बुनियादी सहूलतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज जारी आहे। सियासी समाजी अॻवाननि पैरा मेडिकल स्टाफ ऐं मरीज़नि जे वारसनि एहतजाज जो मुज़ाहिरो कयो। अॻवाननि जो चवण आहे त अस्पताल जा इंतज़ाम पीपीएचआई हवाले थियण खां पोइ अस्पतालनि में सहूलतनि जी खोट पैदा थी वई आहे। ग़रीब माण्हू इलाज लाइ परेशान आहिनि। अस्पताल मां डॉक्टरनि ऐं दवाउनि जी खोट ख़तम कई वई। दादू अस्पताल जीएमएस जे किरदार कशी करण ते अदालत पारां जवाबदार ते 50 लख ॾंड। एडिशनल सेशन जज दादू जे अदालत जवाबदार खे मुख़्तियार जतोई खे 50 लख ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। डॉक्टर अमजद मस्तोई अदालत में पिकायत ऐं साइबर क्राइम तहत पटिशन दाख़िल करायो हो।

खबर में डॉक्टर की मुबैना गफलत सबब हामला औरत बार समझने जारी है। अस्पताल की टीचर हिना बानो माची डॉक्टर की गफलत सबब हयाती बनाए वेठी। औरत के मुड़स मोड़ माची के चवण है तो घरवारी मुसलसल तकलीफ की दाहू कंदी रही पर अस्पताल में दुरुस्त इलाज न कर। अस्पताल इंतजामिया जिम्मेवार डॉक्टर ने अमले खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ दिया।

नारो में शागिर्दनि जो ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाज जारी आहे। शागिर्दनि जो चवण आहे त गुज़िरियल 6 महीननि खां उमरकोट कैंपस बंदि पयल आहे, असांजी तालीम तबाह थी रही आहे। ज़रई यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस जल्द खोल रहा आहे, असांजी तालीम तबाह थियण खां बचाई वञे।

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वरी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
11: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
12: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
11: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
12: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
11: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
12: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
11: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
12: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
13: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
9: त पोए जीएएफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
13: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीएएफएम मातली बदीन
13: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
9: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
13: 0331252576.
9: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
13: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ जनाब मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। बिल्कुल तो सही कहते हैं जिंदगी में मस्ती रोकनी नहीं चाहिए। वैसे भी अगर आप अपनी जिंदगी में मस्ती को जरा आउट कर देते हैं, मस्ती आपकी जिंदगी से कहीं गायब हो जाती है, तो आप यकीन जाने आपकी जिंदगी जो ना वो बेरंग हो जाती है। वैसे भी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में रंग भरने का अख्तियार आप किसी को भी ना दें। हो सकता है जिसको आप ये अख्तियार दे रहे हैं उसके पास सिर्फ काले रंग के अलावा और कोई रंग ही ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी में जो रंग भरने ना तो वो आप अपने हिसाब से भरा करें, किसी और को ये अख्तियार हरगिज ना दें। और इसी के साथ साथ आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश किया करें। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शामिल प्रोग्राम भी हो चुके हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर शामिल होकर अपने होने का एहसास दिलाएंगे। अच्छा, तो मैंने आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं मंडे जनाब के लिए कोई एक ऐसा आपने जुमला बोलना है। मंडे जो है ना हमेशा बचपन से लेकर मंडे के लिए हमारे दिल में एक अलग सी नफरत है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, स्कूल से लेकर मतलब ऐसा वाला सीन है कि मंडे बेचारा, भाई ये है कि मंडे बेचारे से बड़ी नफरत है। तो आपने आज ऐसा एक जुमला बोलना है, एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जो आपको लगता है कि ये मंडे के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन रहे हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। ओके जी, तो बहुत से तवाली बातें करेंगे आप लोगों के साथ साथ और कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो शायद हम किसी को कह नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे हम अपनी वो बातें बता सके, ताकि हमें फिर ये एहसास हो सके कि हमारे पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसे हम खुलकर अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, शेयरिंग इज कैरिंग होती है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो क्या बात है, आपके मैसेजेस मुझे बिल्कुल मिलते जा रहे हैं। और अगर आप कोई भी अच्छा सा गाना सुनना चाहते हैं, मतलब अच्छा होना चाहिए, तो वो गाना भी आप हमें फरमाइश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके मैसेजेस की जानिब हम आएंगे, लेकिन मेरे पास जो अच्छी अच्छी वाले गाने मौजूद हैं तो वो कौन सुनेगा। बिल्कुल जी, वो भी हम ही सुनेंगे। अच्छा, वैसे ये बात है ना, बैठे बैठे कुछ बातें जरा मुझे याद आ जाती है। कुछ लोगों को ना मुखलिसी रास नहीं आती, यानी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो कि आपके साथ बिल्कुल मुखलिस है, तो अगले इंसान को वो मुखलिसी बिल्कुल भी रास नहीं आएगी, इसलिए वो अपने जैसों में ही जाकर मुतमिन होते हैं। और इसीलिए अगर आप किसी से बिल्कुल मुखलिसी से प्यार करते हैं, सच्चे आप उसके साथ बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन उसने आपकी कदर नहीं करी, उसने जाकर दूसरे लोगों से दोस्तियां बना ली, रिश्तेदारियां बना ली, तो सोचिए वो इंसान जैसा है उसे मुखलिसी रास नहीं आएगी और वो अपने जैसों में जाकर मुतमिन रहेगा। तो छोड़ दें इसे इंसानों को और जरा इंसानों के पीछे रोना धोना ये छोड़ दिया करें, क्योंकि एक इंसान कभी भी आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो जनाब आप अपनी जिंदगी के हिसाब से खुश रहना, जो है ना वो देखिए कि आपने कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहना। और टॉपिक को लाजमी जो है ना वो फॉलो कीजिएगा। मैं आज जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बचपन की बहुत सारी ऐसे मेमोरीज है जो कि भाई मंडे के साथ जुड़ी हुई हैं। और मंडे जनाब जो है ना वो हर किसी के दिल में एक ऐसा अलग सा मकाम बना चुका है अपना, कि जब भी मंडे का सोचते हैं, चाहे हम मतलब कोई भी काम ना करें, कोई भी काम नहीं करते, ना स्कूल जाते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, ना ही कोई हमारा ऐसा कोई काम है, लेकिन फिर भी मंडे के लिए जो हमारे दिल में है ना कि भाई मंडे ने हमारा पूरा बचपन जो है वो खराब कर दिया था, ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते। एक बचपन वाला ट्रॉमा जो है ना वो मिला हुआ है हमें मंडे जनाब से। तो आप बताएं कोई ऐसा जुमला जो कि आपको लगता है ये मंडे के लिए परफेक्ट होने वाला है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और उसके अलावा मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गाना मौजूद है, तो हम एक प्यारा सा गाना यहाँ पर आप लोगों के लिए लगा देते हैं। अच्छा, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम धीरे धीरे जो है ना वो थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। वैसे भी वो वाली बात है ना, एक ही चीज हमेशा थोड़ी ना टिकती है, तो गर्मियां हो या सर्दियां हो हमेशा थोड़ी ना टिकेगी। मौसम अच्छा हो चुका है, रात के टाइम तो क्या ही बात है।

हां जी शहजादी ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए जरा मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं रिहाना खान हमें सुन रही हैं बखर से रिहाना आपको वेलकम कहा जाता है वासफ भाई की तेजी से दो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मैं बोले ले सलाम बदर कहते केड़ा हाल है खुशियां चाक चकी भली सफा मजे में ताऊ दा किया है रिहाना कहती है अस्सलाम वालेकुम मैं रिहाना खान बखर से वेलकम टू शो आपको भी वेलकम कहती रिहाना हजार भाई आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम एंजल सिस्टर आप कैसी है सफा मजे में ताऊ दा उनके अलावा यूनिस खोड़ो हमारे साथ कहती है अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम यूनिस कोड़ो गोठ दौलत खान से गड्डा कहते असान तो तुझे खातिर सदी दुनिया में सारे छड़ी पर खबर ना है तू कहजे करे असान के भी सारे छड़ियो वाह वाह बिल्कुल सही लाकिन जी शहजाद गुम थी वे लबे ता देखे बुधाई से जोस

ओके जी, हजार भाई कह रहे हम भी आपके साथ आ रहे हैं। हाँ जी भाई जान। सादिया कह रही यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आपका शो सुन रही है, नादिया नाम है उसका, वेलकम करो ना नादिया, आपको भी वेलकम कहते हैं। और कहती है आप ही चलें, कोई बात नहीं। और हिदायतुल्लाह कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आज तो ये सॉन्ग सुनाना शायद बबर का महबूब तू डिस मुकदर मोजो, यो गानो असं कल वाले शाम वाले प्रोग्राम में बुधो हो मुख्य नवी खबर पर मुझे हलाई उठो तो खबर पे अच्छा ही शाम बुधो सो हलाइंदासीं कुझु ॾींहं इंतज़ार कयो। अच्छा आबिद बिरोही नौशेरो फिरोज खान से गड मौजूद आहे, के दे शो गुड है आपका, थैंक यू। वासा भाई के अदी सिडो जवाब जडी आचर गुजरंदो हुयो, आई सूमर जी सुबह थींदो हुई अंदर सड़ी वेंदो हुयो स्कूल वञण जे करे, सूमर उन ही डीं खां वठी भलो नाए। बिल्कुल बचपन खां वठी जेको आहे न सूमर खां असांखे नफ़रत आहे, उन्हनि ख़ासि करे माण्हुनि खे जेके बाबा कम खां थोरो ख़ुशि न आहिनि हूंदा, पढ़ाई खां ख़ुशि न आहिनि हूंदा, हू चवंदा आहिनि मंडी अगर अची चो थो।

क्या बात है, पोस्ट को लाइक को शेयर करते रहिए। दर्दे दिल हमारे साथ माधुरी जी, हेलो स्वीटी। हिदायतुल्ला कहते वैसे सिद्रा आज मैंने न्यूज सुनी, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा सुना था, शायद ये कुछ है उसका लॉजिक पाने के साथ। इसको थोड़ा डीपली मैं समझने की कोशिश करूंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि असल क्या पता है, क्या मतलब इस चीज का रीजन है। और हाँ, कोई है लिंक जरूर इन दोनों का आपस में। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, आप कैसी ही हो? फाइन सफा में मजे में आता बुदाय किया है। और कहते हैं आचर सदोरो सुमर सड़ियो यू छा ये न क्यों बाबा। बिल्कुल जी, हिकड़ो मानू आ जेको मोती दानो आहे, आई वरी डाडो सुनो आहे। सादिया कहती आप ही प्लीज पोएट्री रीड कीजिएगा, सारे चेहरे वाजे ना कर ए जिंदगी, कुछ लोगों में तो मेरी जान बसती है।

वाह साई वाह वाह साई वाह ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो हुन खां अलावा तव्हां टॉपिक खे फॉलो कयो पिया सूमर वीचारे जे लाइ सूमर जेको ॾियारो सूमर आहे ईअं न त को माण्हू जंहिंजो नालो सूमर हूंदो आहे हुनखे तव्हां को जुमिलो चई वियो अगरि डे जेको आहे मंडे हुन लाइ तव्हांखे को जुमिलो चवणो आहे त उहो तव्हां चई सघो था बाबा ख़बर पए त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके वीचारे सूमर खां सड़िया वधनि था ऐं हुन खां अलावा इहे मेरे साथ इरम मौजूद आहे वालेकुम असलाम दिलबर आपी छा हाल आहे मां सफ़ा मज़े में तव्हां ॿुधायो और इहे मौजूद आहे वालेकुम असलाम आपी आपका शो वेरी नाइस ऐं गोठ मोहम्मद तैयब थी बुखा हबीबुला थी बुभा असांखे जॉइन करे चुको आहे वेलकम कहते हैं भाई को और ये मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नमस्ते मौलाना इस्लाम मदद हेलो हाय हाउ आर यू कहते हैं कि मेरा मस्त मंडे वेरी नाइस फिर गूगल भाई से जी एफ एम की सुपर आरजी भाव को ज्वाइन किया शो चलती का नाम मस्ती में ओके एंजॉय लाइफ एंड गुड शो जयपाल भाई आपको वेलकम कहा जाता है कहते हैं टॉपिक मंडे ब्यूटीफुल डे मेरे लिए तो क्या बात है मंडे की जनाब ओके भाव कराची की कराची की क्वीन के लिए एक सॉन्ग हल्ला गुला सॉन्ग वैसे भाव वो बात बिल्कुल मैं समझ गई जयपाल भाई ठीक है और ये भाऊ हमने इजहार खुशी से मंडे और हमने कराची में कारोबार भी मंडे एंड हमारी शादी भी मंडे को होगी तो थैंक्स मंडे क्या मतलब ये सोचकर आपने सब चीजें करी हैं कि बस जो करना है मैंने मंडे के दिन स्टार्ट करना है वैसे हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनके लिए डे जो होते ना वो बहुत ऐसा होता है कि भाई हमारे लिए ये डे लकी है तो वो उसी दिन वो तमाम काम करते हैं हाँ हर किसी का अपना अपना थिंकिंग होता है तो जयपाल भाई ने तो सारे काम मंडे पर किए हैं तो जयपाल भाई के लिए मंडे तो वो सही है भाई अच्छा है गुड डे

वास साईं वाह हसीना के केर माणी दो बाबा और जड़ी वरी नंडड़ा हुंदा से नी गानो बुदना से पसा चंदा से छो था चवनी त हसीना के केर मारी दो तो जड़ी वडा थे आसी खबर पई त बाबा मारण जी ना मारण जी गाल हले पई इन बिनिन में फर्क आहे

0: क्या बातें थी के साथ साथ प्रोग्राम आप सुनते रहेंगे पूरे पूरे तीन बजे तक चलती का नाम मस्ती और यहाँ पर आप लोगों के साथ मस्तियाँ होंगी जनाब प्रोग्राम में आपका हमारा साथ और यहाँ पर जी गाना आप इंजॉय कीजिए हसीना पोपड़ी आई हसीना पोपड़ी बुधण का पोए असाविंदा से न्यूज ब्रेक जी तरफ उनका शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगा कोई वापसी जल्दी मोटी तवानींदा से तमाम करने में जो बैठा हो जुमा ओ ही
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

हज़ार सत सौ छाहठि अरब ऐं परडे कर्ज़ में ॿ हज़ार छाहठि अरब रुपियनि जी वाधि थी आहे। जून ॿ हज़ार छवीह ताईं वफ़ाकी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ टियासी हज़ार छह सौ ॿाएतालीह अरब रुपियनि ताईं पहुची वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी आहिनि। वधीक ॿ दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाकिस्तान जे इलाइक़े कुली ज़ाइक़े में विझी इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान ॿ दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। टे ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ को यार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं IED ठाहिण जो सामान पिण हथु कयो वियो। तालिबान हुकूमत खिते खे गैर मुस्तक़िम करार ॾियण लाइ पुरकशिश बणिजी चुकी आहे। गॾियल क़ौम में पाकिस्तान जी नुमाइंदी आसिम इफ्तिखार चयो आहे त तालिबान हुकूमत TTP खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं, हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, PLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाइक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में सालसी जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि।

अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो त किम जोंग सां सुठनि लाॻापन सबबि गॾियल फौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंटी अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक इजलास अॼु 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्यवाही बाबति मुशावरत कई वेंदी।

0: इसराइल जे इंता पसंद कौमी सलामती जे वजीर जो नफ़रत जोगो बयान बिन गोर चयो आहे त इसराइल फ़ौज खे हर रात 30 खां 40 माण्हू मारण घुर्जनि। इसराइल फ़ौज जे हिक ही कार्रवाई सिर्फ़ खतरे जो सबब बणजंदड़नि ताईं महदूद न हुअण घुर्जे। गज़ा में कुझ अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअरा रहण जे क़ाबिल न आहिनि। ईरान जे नायब परडेही वज़ीर चयो त इसराइली ॾोहारनि जे एतराफ़नि जो हिसाब ॾिनो वञे। ईसाइन जे रुहानी पेशवा पोपलियो पारां ओलह किनारे में फलस्तीननि ख़िलाफ़ ईसाइन जे रुहानी पेशवा पोपलियो पारां ओलह किनारे में फलस्तीननि ख़िलाफ़ तशदुद जे ख़ात्मे जो मुतालबो। पोपलियो चयो त आलमी बिरादरी पायदार अमुन लाइ बरियासती हल लाइ किरदार अदा करे। समुंड दरिया जबल बेट कारूंझर गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं, भले केस दाख़िल कयो वञे, धमकियूं ॾियो का परवाह न आहे। कराची में स्ट्रेप्स ऑफ दी दुबई पारां सिंध नेशनल एक्सीलेंस एवार्ड तकरीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ अली जे चयो त तरक़ी क़ाबिज़ धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धड़नि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुर्जे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न आहे पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराची खे सिंध खां धार करण ऐं सूबे जे नाले ते सिंध विरहाइण खे अवाम क़बूल न कंदो। भान सईदाबाद लग झांगारा में पीअण जे पाणीअ जो बोहरान संगीन, रहवासियुनि जो धरणो। झांगारा एक्शन कमेटी जे सॾु ते सवें ॻोठाणनि सेवण झांगारा रोड ते धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुजण बावजूद झांगारा वासी पाणीअ लाइ तरपी रहिया आहिनि। करोड़े रूपियनि जी लागत सां मंज़ूर थियल आरओ प्लांट खे यूसी चेयरमैन हलाइण लाइ तयार न आहे। 3 ॾींहनि अंदरि पाणीअ जी खोट ख़तम न कई वई त इंडस हाईवे ते धरणो हणंदासीं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी,
8: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।
9: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
11: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
12: 90.4 पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
13: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
12: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
13: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
12: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
12: 03132525786
13: जी हा 2315525786
12: GFM रेडियो नेटवर्क
13: सिंध जो आवाज़

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. जल्दी का नाम मस्ती ब्रो. और अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जनाब मजे मजे के गाने लगाए जाते हैं, आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और उनका अलावा मैं सोचने लग गई उनका अलावा क्या. तो आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि भाई आप मुझे बताएं कि मंडे के लिए आप कोई ऐसा जुमला बोलें जो आपको लगता है कि ये जुमला तो भाई जान मंडे को बिल्कुल परफेक्ट जाएगा. अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोगों को हम बता सके कि जनाब प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ फन कर सकते हैं. तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगता तो बजाहिर ऐसा है कि ये हमारे साथ बहुत वफादार हैं, बहुत अच्छे इनकी जो है ना हमारे साथ बॉन्डिंग है और ये हमारा साथ हमेशा जो है ना वो देने वाले हैं. लेकिन कई मरतबा ऐसा भी सीन हो जाता है कि कुछ लोग जो बजाहिर बहुत अच्छे नजर आते हैं लेकिन जब आगे जाकर थोड़ा वक्त बदलता है, थोड़े जज्बात बदल जाते हैं तो उनका असल जो चेहरा होता है, जो रंग होता है वो सामने आ जाता है. लेकिन ये भी चीज हमें जरा जहन में रखनी चाहिए कि जो एक वफादार इंसान होता है उसकी पहचान क्या होती है. कई मरतबा हम ये सोचने लग जाते हैं कि एक वफादार इंसान डिस्क्राइब करते हैं आपकी भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए. लेकिन मेरी नजर में जो है ना एक वफादार इंसान, अगर आपको लगता है कि एक वफादार इंसान हमारी लाइफ में मौजूद है तो अगर ये तमाम क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद है तो तब आप यकीन कर लें कि हाँ एक वफादार इंसान वाकई आपकी जिंदगी में मौजूद है. और वो ऐसा ही क्योंकि वफादार इंसान जो होता है ना वो बस गायब हो जाएगा मगर वो कभी बदलेगा नहीं. क्योंकि कुछ टाइम जैसे ही गुजर जाएगा कभी ना कभी अगर आपकी उससे मुलाकात हो जाएगी तो वो बिल्कुल वैसा ही को मिलेगा जैसे आपने उसे छोड़ा था. और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि गलतियों पर छोड़ना नहीं बल्कि आपको संभाल लेगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अगर आप गलती कर लेते हैं तो आपको छोड़ देते हैं लेकिन जो वफादार इंसान होगा वो गलतियों पर आपको छोड़ेगा नहीं बल्कि आपको संभाल लेगा और आपको समझाएगा कि ये जो आपने चीज करी है ये गलत करी है और लोगों के सामने आपकी इज्जत बचाने वाला होगा. मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो अगर लोगों के डर से जो है ना वो आपका चाहे कितना ही कोई प्यारा, कितना ही कोई आपसे प्यार करने वाला इंसान हो उससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई ये अगला इंसान तो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसने तो आगे दुनिया के सामने मेरी इज्जत रखनी है. लेकिन जो इंसान आपकी दुनिया के सामने इज्जत नहीं रखेगा ना तो ये चीज भी बिल्कुल सामने आ जाती है कि वो कभी भी आपके साथ वफादार नहीं है. लोगों के सामने आपकी इज्जत बचाने वाला इंसान ही आपके साथ वफादार होता है. और उसके अलावा जरूरत के वक्त खामोश नहीं होना क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जब हमें लगता है कि भाई ये दुनिया थोड़ी अजीब सी हो चुकी है, हमें कोई नहीं समझता या फिर आपको लगता है कि अब जरूरत है हमारे लिए कोई स्टैंड ले, हमारे लिए कोई बोले. तो जो आपके लिए बोले और जो आपके हक में बोले वही आपके साथ वफादार होता है. और कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी आपके पीठ पीछे वो आपका बुरा नहीं बोलेगा, जो आपके लिए बुरा बोलते होंगे उन्हें भी बोलेगा कि भाई आप क्यों ऐसा बोलते हैं, वही आपके साथ वफादार होगा. क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि आपके साथ तो बिल्कुल वैसे होते जैसे भाई ये आपके लिए बहुत कुछ कर दे लेकिन जब बात यहां से आ जाती है, स्टार्ट होती है कि कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं वो उनके साथ लग जाते हैं, हाँ जी ऐसा ही है ऐसा ही है. लेकिन जो आपके लिए बुरा ना बोले ना बुरा सुने वही आपके लिए वफादार इंसान है और आपका दुख उसका सुकून छीन ले. क्योंकि अक्सर हमारे लाइफ में कितने ही कोई सच्चे लोग क्यों ना होते हैं लेकिन अगर आप दुखी हैं और वो खुश हैं तो ये भी बात जरा हजम नहीं होती कि वो आपके साथ वफादार है. क्योंकि आपका दुख जो होगा ना वो उसका दुख होगा और वफादारी की नीयत जो है ना वो नजर आती है वो जुबान से
और सब साफ साफ वो दिखाई भी देता है। लोग जो भाई ये दिखावा करते हैं कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, आपके साथ वफादार हूँ, वो सिर्फ बातें बोलने की हद तक नहीं, वो कहते ना कि भाई बोलना जो है अगर आप करके दिखाएं तो क्या ही बात हो जाए। बोलने वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा हमारी जिंदगी में होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो वो लोगों के बिहेवियर से हमें मालूम हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की क्वालिटीज आपके पार्टनर के अंदर मौजूद है तो यकीन जाने कि वो बिल्कुल वफादार है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर के अंदर तो समझ लीजिए कि भाईजान समझ गए होंगे। अच्छा, एकड़ो डाडो भलो गानो इते लिस्ट में है हुआ। ये गानो असा बुधंदासी जयपाल भाई मुखी ने गाने जी फरमाइश करी छड़ी हुई।

की जिंदगी में हला गुला होना चाहिए। आए हाय, जयपाल भाई कहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेंशन हमेशा हमने ना किसी को दी है ना ही ली है। ये दोनों चीजें जो है ना वो जरा ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो बस ये सोचे कि भाई हमने, अगर आप कोई नेकी भी करते हैं ना तो वो आप किसी और के साथ नहीं करते बल्कि वो अपने साथ करते हैं, क्योंकि उसका जो सिला होगा वो आप ही को मिलता है। बाकी अगर आप नेकी करके दूसरे से उसका सिला मांगते हैं तो ये फिर थोड़ा काम मुश्किल हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। तो नेकी करें, बस उसे दरिया में फेंकने वाला सीन बनाएं।

पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं नहीं, मैं तो एवे ही आपको छोड़ देती हूँ भाई, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है अश्वा खोड़ो, आपको वेलकम कहते हैं। और सादिया कहती है टॉपिक हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, सही सही। और चाचा कहते हैं गाने जी रुकेश टा बिल्कुल तांजो गानों मो डिसीवर हुआ है। और कहते हैं आज आपका शो हेडफोन लगाकर सुन रहा हूँ, डिफरेंट लग रहा है। अच्छा निधि कहती है आज मैं खाला के घर हूँ और मेरे साथ सब आपका शो सुन रहे हैं, सबको वेलकम करो। चले भाई सबको सबको सबको वेलकम किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ मौजूद है, ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि आप सबको डेडिकेट रहेगा। तो फिर बस सुनिए जरा गाना।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं अब वैसा नहीं कि नेकी कर और दरिया में डाल, अब ऐसा है कि नेकी कर और टिकटॉक पे लगा। हाँ ये सही बात है, लेकिन हम तो नहीं चलाते ना टिकटॉक, तो बस हम दरिया में फेंकेंगे लोगों को डालनी टिकटॉक पे। और गुलाम अकबर खास के लिए हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम लाड़काना की कोयल, आप के क्या हाल चाल हैं जी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं और आपको वेलकम कहते हैं।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर साल कीअं वधाए बाबा, ॻाल्हि समझ में न ईंदी आहे। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब शिखर मोरो, मीर प्रकाश मटियारी, किरण मेहरा पर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। चल दी का नाम मस्ती। बिल्कुल तमाजी सिद्ध तमाम से अगर मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे। 888 फेसबुक पर आप अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं।

भई दुश्मन करे थी मार छा थी वाजो गानो आ वाजो गानो उन अलावा जो आसो तवाजो कुछ मैसेजेस आए जयपाल भाई कहते हैं भाऊ नेट का इश्यू सॉन्ग भी नहीं सुना फिर अभी ऑन किया क्या है नेट सही नहीं चल रही और कहते हैं ओके भाऊ अब मैं कुछ काम कर लूँ इजाजत है बस भाऊ आप खुश रहें हैप्पी रहें दुआ होती है मेरी ओके भाऊ फिर खुदा ने दी जिंदगी और जिंदगी ने दिया साथ तो होगी हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह और आप अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद इंशाल्लाह जी और आप भी अपना ख्याल रखिएगा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं बहुत अच्छे भाई कहते हैं कि जब लाड़काना में होता था तो फ्री में रेडियो से सुनता था क्या जमाना था वो भी ये बात तो है चलें कोई बात नहीं कोई मसला नहीं और साइमा मीर कहते हैं बिल्कुल सिद्रो जो बातें बचपन में समझ नहीं आई शुक्र है वो अब समझ आती है प्लीज प्ले सॉन्ग तमा गानों जी कुछ चाहिए मां कोशिश क्या थी गानों हलाइंदासी साइमा और इरम कहती है यार मेरी और अरीबा की तबीयत ठीक नहीं है सो आप सब दुआ कीजिए हमारे लिए बिल्कुल जी आप दोनों के लिए दुआ करेंगे और बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं दुश्मन बीमार करे सजाते हो चवला नारायण भुग भुग

सारे गाने की ये चीज मुझे समझ नहीं आती, हर साल वधाई छा मना। आबिद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, आबिद बिरोही भाई आपको वेलकम कहते हैं। नौशीरो फिरोज से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सादिया कहती है आप ही मेरी फ्रेंड को वेलकम करें, और वो जी नादिया है। नादिया जी ये काफी पुराना हो चुका है, बोलते हैं तो उसे क्रिंज लगता है। और कहती है मंडे माय लकी डे बिकॉज उस दिन मैं कॉलेज जाती हूँ और मुझे उस दिन ज्यादा पॉकेट मनी भी मिलती है। वाह साईं वाह, अन्ना तक तो पॉकेट मनी मिलन दिया। और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद, ब्लेज मोहम्मद उस्मान ब्रोही सकरण से कहते अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम गुड, और वेलकम टू सिद्रा मुस्कान अंत हाल जेबा सिद्रा। सॉन्ग सुनाओ जी, शादी वाला गाना सुनाओ। शादी वाला गाना सुनेंगे, केंजी शादी करायो था वेरी। और कहते हैं सिद्रा आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। सिद्रा जी प्रोग्राम 3 घंटे करो, प्रोग्राम 3 कलाक का यहाँ, बाकी ब्याज छा कंदा पो।

राजा कमर जमान बलोच कहते हैं। ओके भाई को वेलकम कहते, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम, आइए मारिया, हाउ आर यू माय डियर, गुड शो एंड गुड आरजे, थैंक यू वेरी मच मारिया, आप हमारे साथ ही, आपको वेलकम कहा जाता है। और फजीला सिंधी हमारे साथ हैं, फजीला सिंधी क्या कहती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादे सदरा मस्कान, कैसी हो जानू, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कहते सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को, कहती है सही बोल रही हो डियर, क्या मैंने सही बोला। टॉपिक कहती है स्कूल टाइम, मंडे आता था तो यूनिफॉर्म इस्त्री करना भूल जाती थी, इसीलिए मंडे बुरा लगता था। ना संडे इतना जल्दी गुजर जाता था ना, पता ही नहीं चलता था। और हम ऐसा करते थे, थोड़ा खेल लें, थोड़ा खेल लें, फिर ऐसा करते करते पूरा जो ना संडे गुजर जाता था, फिर बाकी ये सही बात है, जो काम था मंडे का वो हम सारा भूल जाते, फिर मंडे पर हमें जाकर सुबह सवेरे सारी चीजें याद आ जाती थी, फिर डांट भी खाते थे और काम भी करते थे। अच्छा वो तमाम चीजें जो थी उस टाइम हमें कितनी बुरी लगती थी, कितनी बुरी लगती थी, हम कहते हैं बस अल्लाह करे जल्दी से ये टाइम गुजर जाए, हम बड़े हो जाएं। अब वो सब बातें जो चीजें याद करती थी, तो हमें कितना मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही वो तमाम दिन खत्म हो गए, क्यों ही

अच्छा चाचा पता नहीं देखेंगे कि। और मूसा कोरी भाई कहते अद्दी सुमर विचारो रोईंदो उंदो लगे ये तो वाकई असांखे भी। अच्छा चाचा कहते हैं कोई इंसान किसी के साथ वफादार नहीं, बस एक पाक साथ अल्लाह पाक ही है, प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। वैसे सही कह रहे हैं, पर वो अभी गाल है ना, इंसान इंसान का सवाल तक कुछ भी ना है ना, मतलब पांच जिंदगी में तवां के मानो हुजन, मतलब सुठो इंसान वफादार इंसान मिलन एकड़ो वडी नेमत हुंदी आ, मुखे लगंदो अल्लाह ताला जे तरफा अगर तवां के को सुठो इंसान मिलियो आ है, वफादार इंसान मिलियो आ है, उन हिसाब वारो मिलया जे जेको मतलब तवां चाहियो पया, तो या एकड़ी वडी नेमत आ अल्लाह साईं जे तरफा, तो उन जो कदर कयो, शुक्र अदा कयो। कुछ मानो वरी ये हुंदा है जेकी अगर जिंदी लाइफ में एड़ो इंसान अच्छी भी वेंदो आ है, जेको हुनन के समझंदो आ, नसा मोहब्बत कंदो आ, आइन जी हर एक चीज जो ख्याल रखना, पर बदले में उन इंसान के छा मिलंदा, बेचारे के दुख मिलंदो आ। सो ये भी न करना कयो, कंहिंजे सुठाई जो ऐं कंहिंजे भले अमल जो उन खे जेको इनाम आहे न, उहो डुखनि सां त कॾहिं बि न ॾींदा कयो। तव्हां अगरि ॿियो कुझु नथा बदिले में करे सघो त महिरबानी करे उन्हनि खे ॾुख बि न ॾींदा कयो। सो कोशिश कयो, इहे सभु चीज़ूं मूंखे लॻंदो आहे इंसान जे हथ में हूंदियूं आहिनि। सो ॿियो कुझु न, पर तव्हां कोशिश त करे सघो था न, बसि कोशिश कंदा कयो। रशीद खोसो भासे सां गॾु मौजूदु आहे, वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। ऐं साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही, मिठो देरो से तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, सो थैंक यू। हजार भाई कहते हैं सिस्टर बिग रिस्पेक्ट आपके लिए, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। हिदायतुल्लाह कहते हैं वो वफादार दोस्त मेरे पास है शहबाज, 3 साल एक साथ थे, फिर 1 साल में गांव चला गया, फिर अब वापस आया, वैसे का वैसा ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, कभी भी धोखा नहीं देगा।

जी सही कहते हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. गलती नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज करनी है या नहीं करनी. तो बिल्कुल वही बात है. अच्छा, हैप्पी फाइजा हमारे साथ है. वालेकुम अस्सलाम. सिडुर जाने कैसी है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ. शो सुपर डुपर है, चलती का नाम मस्ती. माई क्यूट आरजे कहती है कि हैप्पी फाइजा सिडुर जाने, मेरे चाचों की शादी है, कल से शॉपिंग में बिजी हूँ. आज हम सब अपने गांव जा रहे हैं. क्या बात है जी, इंजॉय कीजिएगा. वैसे अभी शादियों वाला मंथ जो है ना, वह स्टार्ट हो चुका है. हमारी फैमिली में भी 3-4 शादियां होने वाली हैं, तो ये सही है भाई, इंजॉय कीजिएगा. और कहती है हम चाचों की शादी अपने गांव में करेंगे, आपको भी सलाह है, चलो हमारे गांव. कौन सा है आपका गांव?

हाँ भाई, तो भले मैं अब माना कर, पर लगी दो प्यार जी का चले बहुत अच्छा गाना था। उन्होंने के अलावा ही वारो सॉन्ग है जो असानी प्रोग्राम टू लास्ट वीक आई टाइम एतरो जल्दी तेजी से गुजरे पयो खबर ही न पई पवे। अच्छा सो ही एस एस गड प्रेमचंद भाई मौजूद आई, वालेकुम अस्सलाम। रशीद खोजो बात आज मोहबतुआन प्रोग्राम बुधो पया। मोहम्मद राशिद अवान है कहते प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है, ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रही, आमीन सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को वेलकम कहते। सादिया तमाम गाने की फरमाइश कई पंज बजवारी प्रोग्राम में तुम गानों हलाइना सी। मेहताब अली इंदड़ भाई हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून। अच्छा मायरा कहती हैं कि मैं मायरा हूँ और मायरा की से सनम आपको बहुत लाइक करती हूँ, सिर्फ आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ, आपकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरा आवाज आपको सुकून देता है, सो किसी के लिए तो सुकून का बायस हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम।

0: वफ़ाकी ओपिनियन सो इसी के साथ ले देंगे आप लोगों से इजाजत वरी इंशाल्लाह सुभाणी तमाम से मुलाकात थी पई मुंजी।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: 83,642 अरब रुपयनि ताईं पहुची वियो।

तालिबान हुकूमत खिते के गैर मुस्तकिम करण लाए पुरकसी बणजी चुको आहे। गरियल कौमन में पाकिस्तान जी नुमाइंदी आसिम इफ्तिखार चयो आहे त तालिबान हुकूमत टीटीपी के महफूज पनागाहूं हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। टीटीपी बीएलए ऐं मजीद ब्रिगेडियर दाइश जा इलाक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में सालसीअ जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि।

पार्लियामेंट जे अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक इजलास 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबति मुशावरत कई वेंदी। घरु वज़ारत जे मातहत समूरनि सरबराहनि जो घरु वज़ीर मोहसिन नकवीअ जी सदारत हेठि इजलास। घरु वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गॾियल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नकवी चयो आहे त घरु वज़ारत जो कमु ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटीअ ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि।

तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारणु घुर्जनि। अरिड़हीं आईनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जी डेवल्यूशन कमेटी जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो आहे त सिहत तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर ट्रस्ट ऐं ज़कवात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतकिल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबब क़ौमी नाणे खे अरबे रुपयनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसी खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी भार ख़तम करे ख़र्च 109 अरब रुपयनि मां घटाए 130 अरब रुपया कयो वञे। कतल केस में मुआवजे जी रक़म मुक़रर जो मामलो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। जस्टिस हाशिम काकड़ जी सरबराई में बेंच जवाबदार नदीम ख़ान जे अपील ते ॿुधणी कई। प्रोसिक्यूटर चयो त मौजूदा वक़्त में मुआवजे जी रक़म तकरीबन 1.97 करोड़ आहे। जस्टिस अलाउद्दीन रिमार्क्स ॾिना त क़तल करणु थोरो महांगो हुजे त माण्हू कंहिंजो क़तल न कंदा। सऊदी अरब में क़तल जो मुआवज़ो 108 ॾियण आहे। जस्टिस इश्तियाक रिमार्क्स ॾिना त वक़्त ते फ़ैसिलो न थियण निज़ाम जी ख़राबी आहे ऐं निज़ाम जी ख़राबी जी सज़ा जवाबदार खे नथी ॾेई सघिजे।

ख़बर चयो आहे त इसराइल फ़ौज खे हर राति 30 खां 40 माण्हू मारणु घुर्जनि। इसराइली फ़ौज जी हीउ कार्रवाई सिर्फ़ ख़तरे जो सबबु बणजंदड़नि ताईं महदूद न हुअणु घुर्जे। इंतज़ाम में कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअरा रहण जे क़ाबिल न आहिनि। ईरान जे नाइब परॾेही वज़ीर चयो आहे त इसराइली ॾोहारनि जे एतिराफ़नि जो हिसाब ॾिनो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
8: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छो थी डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज वैक्सीन के लिए उम्र की हद कोने कें जगह वैक्सीन कें उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो 10 साल के घट आ ते असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125-25786।
1: जी हा, 2301-3525-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन दरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असावट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असान जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3241-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पली जो दुबई में स्पर्स ऑफ द एमिरेट्स दुबई की सिंध नेशनल एक्सलेंस अवार्ड तकरीब के खिताब। अयाज लतीफ पली तरक्की काबिज धड़न की दौलत वधाने न पर धरती धड़न की जिंदगी बेहतर बनाने लाइ हुजन घुर्जे। कराची सिंध का धार को सियासी शहर ना है पर सिंध की तारीख ए वजूद जो हिस्सो है। कराची के सिंध का धार करण सूबे के नाले से सिंध विरहण के अवाम कबूल न कंदो।

वफाकी हुकूमत जी कर्जनि में 18,832 अरब रुपयनि जी वाधि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिब 28 महीननि दौरान वफाकी हुकूमत जी मक़ामी कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परडेही कर्ज़नि में 2,066 अरब रुपयनि जी वाधि थी। जून 2026 ताईं वफाकी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ते पहुची वियो।

घरू वज़ारत जी मातहत समूरन सरबराहन जो घरू वजीर मोहसिन नकवी जी सदारत हेठ इजलास घरू वज़ारत जे इदारन जी कारकर्दगी बेहतर बनाने गडियल राबता मजबूत करण ते गौर वीचार। मोहसिन नकवी चयो त घरू वज़ारत जो कम बेन वज़ारतुनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट बि कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटीअ ते असराइता ऐं गडियल क़दम यकीनी बणाइनि। तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारण घुर्जनि। अरिड़हीं आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवोल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, एवेक्यू ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतकिल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत की त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी बार ख़तम करे ख़र्च 190 खरब रुपियनि मां घटाए 130 खरब रुपया कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं

0: अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाणे रोजानू मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हा, 231-25-25-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS

0: रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 310-31-43-842।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खां साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: सुबह हो या अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथा हमलन की धमकी दे छी। पाकिस्तान इनकलाब से सीधी रीत राबतन की भी तस्दीक। मीडिया फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे डोनाल्ड ट्रंप जडे अबना हुरमस खोलण की कोशिश में ओमान रुकावट बणियो तो अमरीका उन सख्त बमबारी कंदो। अमरीका वट अञा भी हथियार जा वसी जखीरा मौजूद आन। अमरीका इन वक्त तई जेतरा हथियार इस्तेमाल कया मौजूद हथियार की मजमू जखीरे की भेट में तमाम घट आन। हाँ ईरान के हथियार फिटा करण अछो झंडो ऊंचो करण घुर्जे। ईरान से जारी तकरार खत्म करण लाय का तकड़ ना है। मुझी इंतजामिया ईरान के पासदारन इनकलाब से सीधी राबते लाय एक बैक चैनल भी कायम किया है। अमरीकी सदर की मके दिफाई माहदे की हिमायत से वजीर आजम पारा ट्रंप की वाखाण। वजीर आजम शहबाज शरीफ तो मका गडल दिफाई माहदे से अमरीकी सदर के लफ्जन की वाखाण कया तो। सऊदी अरब ए तुर्की से गड़ी पाकिस्तान पहंजो ए खिते जो दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा कंदो रहंदो। दक्षिण एशिया में एटमी तबाही जो खतरो टारण ते डोनाल्ड ट्रंप के भेटा पेश कया तो। अमन अमान की रोशन मुस्तकबिल जरूरी ए बुनियादी शर्त है। मोहसन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिंध में कड़ी हैसियत है जो नवन सूबन की गाल पा कन। रुगो एक बल्दियाती निज़ाम के बिटो निज़ाम करा दे मानून सजी सिंध उथलाए छी हुई। असाजा एमपीएस घर में भी बाहर न पाया निकरी सकन। यह तरमीम असा के वापस वठनी पैजी वही। नवन सूबन की गाल से सजी सिंध उथरी पवी ए खौफनाक नतीजा निकरंदा। सिंध विरायण जो गाल कदड़न के शर्म अचन घुर्जे। जे पान के गड ना रखी सन उ सिंध विरायण जो गाल कर रहा जो वण करे वठन। मां लिखी तो दियां तो सिंध में नवा सूबा न ठहंदा।

समुंड दरिया जबलन बेटन गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं, भली केस दाख़िल कयो, धमकियूं ॾियो, का परवाह न आहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो अॼु दुबई में सिंध नेशनल एक्सीलेंट सेवा तकरीफ़ ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ चयो त तरक़ी क़ाबिज़ दौरनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धणनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुर्जे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराचीअ खे सिंध मां धार नथो करे सघिजे। तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारण घुर्जनि। अरिड़हीं आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवेल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, एवेक्यू ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबे ॾांहुं मुंतकिल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सान पहुतो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी बार ख़तम करे ख़र्च 190 खरब रुपियनि मां घटाए 130 खरब रुपया कयो वञे।

वफाकी हुकूमत जी कर्जन में 18,832 अरब रुपयनि जी वाध। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिब 28 महीननि दौरान वफाकी हुकूमत जी मक़ामी कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परडेही कर्ज़नि में 2,066 अरब रुपयनि जी वाध थी आहे। जून 2026 ताईं वफाकी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ते पहुची वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी, वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलोचिस्तान जे इलाइक़े कुली ज़ाइक में गुझे इतलाती ऑपरेशन दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे मारे वियो, टे ज़ख़्मी थी पिया। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाण मुश्ताक अहमद कोहियार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां एम्यूनिशन, मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं AID ठाहिण जो सामान पिणत कयो वियो। तालिबान हुकूमत खिते खे गैर मुस्तहकम करण लाइ प्रॉक्सी बणिजी चुकी आहे। गॾियल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो त तालिबान हुकूमत TTP खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं, हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में टियाकड़ीअ जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि। सिंध जे इम्कानी विरहांगे ऐं दरिया ते कैनाल अॾण ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जी सेवण में एहतजाजी रैली। डॉक्टर न्यास कालाणी, पुनल सारियो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में डिग्री कॉलेज खां धमार चौक ते रैली कढी वई। डॉक्टर न्यास कालाणी MQM अॻवाननि खे मुखातिब थींदे चयो त छा तव्हां शाराए फैसल, लालू खेत, औरंगी ऐं कोरंगी हिंदुस्तान मां खणी आया हुआ? तव्हांजो सिंध हुकूमत सां जहिड़ो आहे त भली कयो, सिंध ख़िलाफ़ को बि साज़िश बर्दाश्त न कंदासीं।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जेतरा भी बार आयन उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाइण लाज़मी आहे।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाए बेशुमार कीमती इनामात।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वाम बिटो निजाम करार दे सजी सिंध उथलाए छी हुई असाजा एमपीएस घर में निकरी भी न पे सकिया या तरमीम असा के वापस वठनी पेजी वही है। तस्वर कयो त असा मां कहें सूबे जी हिमायत कई त अवाम केड़ो हशर कंदो। नवन सूबन जी गाल जा खौफनाक नतीजा निकरंदा। सूबाई वजीर सईद गनी कोरंगी में तकरीब के खिताब कंदे चयो त मोहसन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जी सिंध में केड़ी हैसियत है जो नवन सूबन जी गाल कन पिया। सिंध विरायण जी गाल टे चार उहे मानू कन था जेके काउंसलर भी नथा थी सकन। एक बे के गोलियों ए कुर्सियों हारण वारा नए सूबे की गाल कन था खेन शर्म अचन घुर्जे। जिनके एक बे की शिकिल पसंद न आए उहे कहें जी चवण ते गर्जी सूबन जो मुतालबो कन था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उमान मथा हमलन की धमकी दे छी पास्तारान इनकलाब से सीधी रीत राबत की भी तस्दीक। मीडिया फोक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे डोनाल्ड ट्रंप जैसे आबना हॉर्मस खोलण की कोशिश में उमान रुकावट बनो तो अमेरिका उन सख्त बमबारी कंद। अमेरिका वट अजा भी हथियार जहा वसी जखीरा मौजूद है। अमेरिका इन वक्त तीन जितरा हथियार इस्तेमाल कया उ मौजूद हथियार के मजमू जखीरे की भेट में तमाम घटा हाँ। ईरान के हथियार फिटा कर अछो झंडो ऊंचो कर घुर्जे। ईरान से जारी तकरार खत्म करने लाए का तकड़ ना है। मुझी इंतजामिया ईरान के पासदारान इनकलाब से सीधी रीत राबते लाए एक बेक चैनल भी कायम किया है।

वेठे जनी वट डुखंदो दूर थिए, वेठे जनी वट डुखंदो दूर थिए, तन तनी सी कट ओडा दे पकड़ा।

GFM 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम आहे रस रियाण। रस रियाण प्रोग्राम साण करे आऊं हाजिर आहियां अवां जी खिदमत में, अवां जो आरजे, अवां जो मेज़बान, अवां जो भाई, अवां जो दोस्त मीर मुर्कवाठो।

9.4 मातली लाइव स्टूडियो में ही प्रोग्राम अवां ताई पहुंचाइण में मुझी मदद करे पियो रब नवाज खास कहली असा पारा सिक भरियो सलाम कबूल कंदा। शाम जे पहर में ही नव प्रोग्राम रस रिहाण खणी असां अवां जी खिदमत में अॼु हाज़िर थिया आहियूं। असांखे उमीद आहे त असांजो ही आवाज़ मातली खां वेंदे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि माॻे मकाननि ताईं पहुचंदो हूंदो। असांजे पारां अवां जे लाइ नेक तमनाऊं भलीकार दुआऊं ऐं सिक भरिया सलाम शाल क़बूल पवनि। हा साईं ॾियो हाल अहिवाल, असांखे उमेद आहे त अवां ख़ुशि हूंदा जिते बि हूंदा ऐं असांखे बिल्कुलु अवां जो फ़िक्र बि रहंदो आहे त असां अवां सां ॻाल्हि ॿोल करियूं। अवां जे लाइ ॾाढा मन मोहींदड़ ऐं सुठा ऐं सुहिणा प्रोग्राम खणी हाज़िर थिया आहियूं। इन सिलसिले जी

थींदो ऐं अवांजी ख़िदमत में ॾाढा सुठा गीत ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं खणी हाज़िर थींदो ऐं असां चाहियूं था त अवां बि असां सां जुड़ियल रहो ऐं 90.4 मातली जी एफ एम जो जेको ई प्रोग्राम आहे इनखे कामयाब करण में अव्हांजो सहकार असांखे ज़रूरु दरकार आहे, छो त हीउ प्रोग्राम अवां ॿुधंदड़नि जे लाइ अवी ॿुधंदा रहंदो त इनशाह हिन क़िस्म जा बहितरीन प्रोग्राम अव्हां ताईं पहुचंदा बि रहंदा। ॻाल्हियूं करण जे लाइ तमामु घणियूं आहिनि पर चाहियूं था त अव्हां खे वठी हलूं मौसीक़ी जी दुनिया में, अव्हां ताईं पहुचायूं पहिरीं ई ख़ूबसूरत नगमूं ऐं उन खां पोइ वरी पाण ॻाल्हि ॿोलियूं सिलसिलो जारी रखंदासीं।

प्रोग्राम आहे रस रिहाण, रस रिहाण वञी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां। अॼोके प्रोग्राम खे अव्हां ताईं पहुचाइण में मूंसां गॾु आहे रब नवाज़ कासकेली, अब्दुर्रज़ाक दर्स जो बि मूंसां साथ हासिल आहे, जॾहिं त आऊं आहियां अव्हां सां गॾु अव्हांजो भाउ, अव्हांजो आरजे, अव्हांजो मेज़बान मीर बुक वाठो। मूंखे उमेद आहे त अव्हां असां सां जुड़ियल ई रहंदा। हीउ प्रोग्राम जेको रस रिहाण आहे रोज़ानो 7 वॻे शुरू थींदो ऐं इनशाला ताला 7 वॻे जे ख़बरनि खां पोइ जी स्टार्ट थींदो त 9 वॻे ताईं असांजो साथ अव्हां सां जारी उसारी रहंदो। त अॼु जे प्रोग्राम में बि अव्हां सां काफ़ी ॻाल्हियूं थींदियूं। अव्हां जेकॾहिं हिन प्रोग्राम में हिसो वठणु चाहियो था त तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। तव्हां मोबाइल जे ज़रिए असांखे मैसेज करे सघो था। मैसेज करण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, सभ खां पहिरीं लिखंदा MTI, MTI लिखण खां पोइ थोरी विथी ॾींदा, थोरो स्पेस ॾींदा, उन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, उन खां पोइ जेकॾहिं का ॻाल्हि शेयर करणु चाहियो त उहा बि लिखी सघो था। ऐं जंहिं नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर आहे 88 81, यानी 888-1 888-1 ते अव्हांजा जीअं ई मैसेज असां ताईं पहुता त हिन प्रोग्राम में अव्हां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदासीं। ॾिसूं त अॼु सभ खां पहिरीं कंहिंजो मैसेज असां ताईं पहुचे थो। जीअं मैसेज पहुचंदा त अव्हां जे नाउं ज़रूरु कंदासीं, छो त कॾहिं कॾहिं माण्हू खे पंहिंजो नालो बि वणंदो आहे न, इन करे चवंदा आहिनि त जॾहिं बि को ॿारु जनम वठे थो त उन जो नालो सुठो रखो। नाला जेके सुठा हूंदा आहिनि उहे शख़्सियत ते असरु कंदा आहिनि। अॻे ज़माने ऐं हाणे में वॾो फ़र्क़ु आहे। अॻे त ईअं हूंदो हो त जेकी बि नाला हूंदा हुआ उहे रखी छॾींदा हुआ, पर हाणे माइट थोरी सोच वीचार खां पोइ नालनि जो इंतिखाबु कनि था, जेका यकीन हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। त जॾहिं बि ॿार को गुल अंगण ते जेको आहे सो टिड़े थो त यकीन उहा उन घर वारनि जे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी आहे, मिटनि माइटनि जे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी आहे। त ॿार जे सुठे नाले जो इंतिखाबु करणो बि ज़रूरी हूंदो आहे।

डॉक्टर आकाश अंसारी शायरी दीबा शहर जो खूबसूरत आवाज प्रोग्राम है रस रियाण अवां सां जुड़ियल रहो केॾा बि न वञो ॿुधंदा रहो जी एफ एम 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

एक दफो वरी अवां समूरन मेहरबानन के भलीकार चवंदासीं जी एफएम 90.4 मातली जो ही प्रोग्राम आए रस रिहण जेको अवां जी खिदमत में लाइव स्टूडियो में पेश कयो पियो वञे।

GFM 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में 7:05 ते शुरू थींदो आहे। इंशाल्लाह ताला 9 बजे ताईं अवां जो ही असांजो साथ जारी और सारी रहंदो। अजो के प्रोग्राम में आऊं आया अवां सा गड ऐं मुंहिंजो नालो आहे मीर मुरकवाठो। अवां असांखे ॿुधो पिया मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में मातली में हीअ स्टेशन मातली जेको बाबा सकाफ़त रईस करीम बख़्श निज़ामाणी जो शहर ऐं मातली में ई रईस करीम बख़्श निज़ामाणी जो साहिबज़ादो साईं हाशम रज़ा निज़ामाणी साहिबु असां सां कनेक्ट थिया आहिनि, असांखे ॿुधनि पिया। हाशम रज़ा साईं वॾी महिरबानी, हीउ प्रोग्राम हीउ स्टेशन तव्हांजी पंहिंजी, अवां असांखे यादि कयो ऐं मोहबतूं अर्पियूं। इन लाइ असां जो पूरो जेको अमलो आहे स्टाफ आहे अवांजो थोराइतो आहे, वॾी महिरबानी। बाबाए सकाफ़त रईस करीम निज़ामाणी जे शहर मां हीउ आवाज़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि ताईं पहुचे पियो, अवां बि असांखे यादि कयो, असां सां जुड़ियल रहिया, वॾी महिरबानी।

अदली खां ई असांजो अवामी शायर बेवस निज़ामाणी असांखे ॿुधंदो आहे, न सिर्फ़ असांखे ॿुधंदो आहे पर तक़रीबन जेके FM स्टेशन या रेडियो पाकिस्तान जूं स्टेशनूं आहिनि उन्हनि खे ॿुधंदो आहे, कनाईंदो आहे ऐं हुन में हिसो वठंदो आहे। बेवस निज़ामाणी अॼु असां सां गॾु आहे। बेवस साईं, वॾी महिरबानी, असां अव्हांजी शायरी बि इनशाला थी सघे थो अॼोके प्रोग्राम में शामिल करियूं, जेकॾहिं असांखे को अव्हांजो गीत मिले थो त। शाम जे हिन पहर में असां सां गॾु आहिनि ॻोठ इस्माइल वाढे खां बबलू वाढो, मुज़फ़र वाढो, ज़फ़र वाढो, नंढड़ी परिवेश बि असां सां गॾु आहे। नंढड़ी गज़ाला ऐं सिद्रा बि असां सां गॾु आहिनि, अव्हां सभिनी जी महिरबानी। हफ़ीज़ वाढो बि ॻोठ इस्माइल वाढे में असांखे ॿुधे पियो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

रसरियाण प्रोग्राम एक दफो वरी अवांगे भलीकार चाहूं था, वेलकम चाहूं था। ही प्रोग्राम अवांजी खिदमत में पेश कयो पियो वंजे जीए एफएम 90.4 मातली जी लाइव स्टूडियो में। अजो के प्रोग्राम में अवां जो असो साथ रहंदो इंशाल्लाह ताला रात जो 9 वगे ताई असी अवां सा कयूं पिया अवां जो गालियूं अवां ते पहुंचायूं पिया उहा मौसीकी जेके अवां बुधण चाहियो था। जेकॾहिं अवां पंहिंजे प्रोग्राम में हिसो वठणु चाहियो ऐं असां सां नातो निभाइणु चाहियो, छो त हीउ आवाज़ जो हिकिड़ो रिश्तो आहे, त उन जे लाइ अव्हांखे हिकिड़ो मैसेज करणो पवंदो, SMS करणो पवंदो। तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल जे मैसेज ऑप्शन में वञी करे हिकिड़ो अखर लिखंदा MTI, शॉर्ट फॉर्म आहे मातली जो। MTI लिखण खां पोइ पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं उन खां पोइ जेकी पंहिंजा नाला लिखो, का ॻाल्हि अहिड़ी लिखण चाहियो जेका असां सां शेयर करणु चाहियो, ऐं जंहिं नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर आहे 8881, यानी 888 ते अवांजा जी मैसेज ईंदा ऐं पहुता आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिल कयूं पिया।

मातली खां खालिद हुसैन नोतकाणी असां सां गॾु आहे। खालिद प्रोग्राम ॿुधंदो रहंदो आहे तक़रीबन जी FM मातली, जो असांजो पुराणो ॿुधंदड़ आहे। निसार नाचीज़ नोतकाणी सदन बिरादर आहे, उहो बि प्रोग्राम ॿुधंदो आहे। अवां ॿिन्ही भाइरनि जी महिरबानी, अॼु अवीं असां सां जुड़ियल रहिया हिन प्रोग्राम रस रिहाण में।

साईं मुंहिंजा सवेर ज़िक्र कयोसीं प्रोग्राम में थोरी देरि पहिरीं मानी जे हवाले सां, त मानी के माण्हू टे वक़्त बि खाईंदा आहिनि, के ॿ वक़्त बि खाईंदा आहिनि, के हिकिड़ो वक़्तु बि खाईंदा आहिनि, ऐं के त सफ़ा न खाईंदा आहिनि ऐं कुझु ॿियूं शयूं वापराईंदा आहिनि मानी जी जॻह ते, ऐं उहे चाहींदा आहिनि त असांजी सिहत सुठी रहे। पर खाधो बि ज़रूरी आहे, मानी बि ज़रूरी आहे, जेका सिहत क़बूले सघे, एक्सेप्ट करे सघे, उन हिसाब सां मानी खाइजे। पर मानी सवेर खाइजे, पंहिंजे वक़्त ते खाइजे, ऐं कॾहिं कॾहिं वक़्त खां हटी करे मानी खाइजे थी, त पोइ हुन जो सिहत ते असरु ज़रूरु पवंदो आहे। कॾहिं कॾहिं त खाइण जो मुक़ाबिलो बि थींदो आहे, ऐं के माण्हू कॾहिं कॾहिं महिमान थी बि वेंदा आहिनि, या किथे हूंदा आहिनि, या कंहिं दावतूं बि हूंदियूं आहिनि, त पोइ खाइण में थोरी माण्हू कोशिशि कंदो आहे त जेतिरो वणे ओतिरो खाए, पर कॾहिं कॾहिं माण्हू हुन खां हटी करे खाई वेंदो आहे, ऐं पोइ हुन जो असर बि कॾहिं कॾहिं ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे। ऐं इन जे लाइ बहितर इहो आहे त जेतिरो हज़म थी सघे, या जेतिरी माण्हू खे पंहिंजी सिहत इजाज़त ॾिए थी, ओतिरो खाईंदो। चवंदा आहिनि त घणो ॾिसंदा कयो, थोरो खाईंदा कयो, पंहिंजी सिहत जे लाइ इहो तमामु घणो ज़रूरी हूंदो आहे।

0: प्रोग्राम आहे रसरियाहण अवां जा मैसेज असां ताईं बिल्कुलु पहुता आहिनि। रबन आवाज़ मूंखे ॿुधाए पियो त मैसेज बिल्कुलु पहुता आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिल करणा आहिनि, पर न्यूज़ जो टाइम थिए पियो त असां कोशिशि कंदासीं न्यूज़ अवां ताईं पहुचायूं, ऐं जीअं ई अवां जा ॿिया बि मैसेज असां ताईं पहुचंदा त बिल्कुलु अवां जे समातन जे नाम ज़रूर कंदासीं। प्रोग्राम रसरियाहण रसरियाहण अवां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो मां। अॼु जे प्रोग्राम में मुंहिंजो आहे अवां सां साथ, ऐं मुंहिंजो नालो आहे मीर बुर्क वाढो। अवांजो ऐं असांजो साथ रहंदो इनशाला ताला राति जो 9 वॻे ताईं। राति जा 8 थिया आहिनि त हलंदासीं न्यूज़ जे तरफ़। पहिरीं ॿुधंदासीं ख़बरूं चारूं ऐं उन खां पोइ इनशाला ताला पाण हाज़िर थींदासीं हिन साॻे प्रोग्राम में। ऐं जीअं न्यूज़ असां ताईं पहुचनि थियूं त अवां ताईं पहुचाईंदासीं। अवां जा मैसेज असां ताईं पहुचनि पिया त हाणे न्यूज़ अवां ताईं पहुचायूं था।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथां हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। पाकिस्तान इनकलाब सां सिधी रीति राब्तनि जी बि तस्दीक। मीडिया फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त जेकॾहिं आमना हुरमस खोलण जी कोशिशुनि में ओमान रुकावट बणियो त अमरीका उन ते सख़्त बमबारी कंदो। अमरीका वटि अञा बि हथियारनि जा वसी ज़ख़ीरा मौजूद आहिनि। अमरीका हिन वक़्त ताईं जेतिरा हथियार इस्तेमाल कया उहे मौजूद हथियारनि जे मजमूई ज़ख़ीरे जे भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करण ऐं अछो झंडो ऊचो करणु घुर्जे। ईरान सां जारी तकरार ख़तम करण लाइ का तकड़ नाहे। मुंहिंजी इंतिज़ामिया ईरान जे पासदारनि इनकलाब सां सिधी रीति राब्ते लाइ हिकु बेक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे। अमरीकी सदर जे मके दिफ़ाई मुआदे जी हिमायत ते वज़ीर आज़म पारां ट्रंप जी वाखाण। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त मका गॾियल दिफ़ाई मुआदे ते अमरीकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो। ॾखिण एशिया में एटमी तबाहीअ जो ख़तरो टारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो। अमुन अमान जी रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। इस्लामाबाद में MOU ते सही थियण खां पोइ ईरान जी सख़्त गीर क़यादत गुज़िरियल 2 महीननि दौरान वॾी जंग जी तयारी ते ध्यानु ॾिनो। इन तयारी जे सिलसिले में पासदारान इनकलाब खे मुल्क जे फ़ौज ते वधीक कंट्रोल ॾिनो वियो। जॾहिं त अहम उहिदनि ते इराक जंग जो तजुर्बो रखंदड़ माज़ी जे अंदरूनी क्रेकडाउन्स में शामिल फ़ौजी आफ़ीसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन खे बि वधायो वियो आहे। मिज़ाइलनि ऐं ड्रोन्स जी पैदावार में तेज़ी आंदी वई। उन सां गॾु ईरानी क़यादत आबनह हुरमस ते पंहिंजी गिरफ़्त मज़बूत करण लाइ सामूंडी जहाज़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं ऐं जंग जो दायरो ॻाढ़ी समुंड ताईं वधायो।
3: मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, सियासी कारकुन जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, सिंध के अंदर कोई सुबह नहीं करता। आपको लिख के देने को तैयार हूं, पूरा सुबह सिंध इसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। बलदियाती निजाम को लोग जब ये समझ जाएं कि ये दौरा है सिंध के मफाद में नहीं है और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे MPs आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस लें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो आप तसव्वुर करें कि अगर खुदाना खासा ये सूबे की बात पे पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप वैसे आर्गूमेंट के लिए बात कर रहा हूं, जहाज ही बना दें, तो जो लोग बलदियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तस्वर कर सकते हैं कि वो क्या हासिल करेंगे हमारा। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी जाके कौंसिल भी बन सकते यार, हसित है कंसियन की आज हसित रहेगी, एक यूसी नहीं जी सकते ये, वो बैठ कर फैसला करेंगे कि सिंह का मजीद सुबह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको कुछ शर्म आनी चाहिए, वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, दूसरे शक्ल दूसरे जो उसमें पसंद नहीं करते, और सुबह सिंह सुबह बनाने लिए कोई कट्ठे बिठा देता तो बातचीत शुरू कर देते।
2: जेको वणेव करे वठो, लिखी थो ॾियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा MPs घरनि मां निकिरी न पए सघिया, इहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पई, ऐं तसवुर कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवन सूबन की गाल जा खौफनाक नतीजा निकरंदा। सूबाई वजीर सईद गनी कोरंगी में तकरीब के खिताब कंदे चयो तो मोहसन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिंध में कड़ी हैसियत है जो नवन सूबन की गाल कन पा। सिंध विरण की गाल टे चार उ मानू कर रहा है जैसे काउंसलर भी नथा थी सकन। एक बे के गोलियों कुर्सियों हण वारा नए सूबे की गाल कन था खेन शर्म अचन घुर्जे। जिनके एक बे की शिकिल पसंद ना है उसे कें चवण से गड़ी सूबन जो मुतालबो कन था। तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ए वन बंदरगाह जहा मामला सीसीआई में उथारण घुर्जन। अड़ी आईनी तरमीम से मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया वे। सैनेट के डिवलेशन कमेटी के बैरिस्टर जमीर गुमरो की सदारत हेठ इजलास। बैरिस्टर जमीर गुमरो चयो तो सेहत तालीम मौसमियाती तब्दीली पानी वाली वजारत कल्चर एक्वी ट्रस्ट ए जक़ात समेत बियों वजारतों बिन हफ्तन अंदर सूबन या मुंतकिल कई वन। कमेटी चयो तो अड़ी तरमीम से अमल दरामद न थियण सबब कौमी नाणे के अरबे रुपये जो नुकसान थो है। कमेटी हिदायत कई तो वफाकी ब्यूरोक्रेसी के घटाए कौमी खजाने से गैर जरूरी बार खत्म कर खर्च 190 खरब रुपये में घटाए 130 खरब रुपया किया वे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। आसान जवाब यो आ, ये बार भी असावट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखा लाजमी है, जरूरी आए। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उन्हन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578 6
5: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

रसरियाण प्रोग्राम एक दफो वरी अवां समूरन मेहरबानन के भलीकार चवंदासीं। रसरियाण प्रोग्राम अवां जी खिदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफएम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां। हिन प्रोग्राम में अवां जो या असांजो साथ रहंदो इंशाल्लाह ताला। रात जो 9 बजे ताईं प्रोग्राम जो बियो हिसो आहे। अॼु हिन प्रोग्राम में आऊं आहियां अवां सां गॾु अवां जो आरजे, अवां जो मेज़बान, अवां जो भाउ, अवां जो दोस्त मीर बुर्क वाठो। काफ़ी ॾींहं पुॼाणा प्रोग्राम रस रिहाण अवां जी ख़िदमत में पेश कंदे असांखे यकीननि ख़ुशी थिए पई, अवां खे ॿुधंदे ख़ुशी थींदी हूंदी। अवां जा नाला ख़बरनि खां पहिरीं मूं ज़िक्र कयो त असां ताईं पहुता आहिनि, जेके वठणु ज़रूरी था समझो। अवां असांखे ॿुधो पिया मुनवर शाह असगर शाह तलहार वेझो ॻोठ आहे ख़ालद खां निज़ामाणी उतां खां, त मुंहिंजे ख़्याल में ॻोठ जो नालो ख़ालद निज़ामाणी आहे। मुनवर शाह असगर शाह अवां जी वॾी महिरबानी, अवां असांखे कनायो पिया जीए एफ एम मातली जे नवे शुरू थींदड़ प्रोग्राम।

अवां असांखे ॿुधो। उमीद त आईंदा पिणु असांजे प्रोग्रामनि में अवां हिसो वठंदा रहंदा। ही प्रोग्राम, ही स्टेशन अवांजी आहे, असां अवां जे लाइ पेश कंदा आहियूं। त जेतिरी अवां जी मोहबत हूंदी या अवां जी ख़्वाहिश हूंदी, अवां जी दिलचस्पी हूंदी, असां उन मुताबिक़ प्रोग्राम खे सींगारे ऐं संवारे पेश कंदासीं।

टंडे गुलाम हैदर खां असांजो पुराणो ॿुधंदड़ साथी आहे अब्दुल अज़ीज़ सूमरो। अब्दुल अज़ीज़ साईं, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं प्रोग्राम में नशर थींदड़ मौसीक़ी अव्हांखे पसंदि अचे पई, इन सां गॾु जेके असां ॻाल्हियूं कयूं पिया उहे बि अव्हांखे वणनि पियूं, त ही प्रोग्राम ई जॾहिं अव्हांजो आहे त ज़ाहिर आहे ॻाल्हियूं अव्हांजूं ई थींदियूं ऐं अव्हांखे वणनि थियूं। त असांखे उमेद आहे त आईंदा पिणनि प्रोग्राम में हिसो वठंदा रहंदा। अव्हां असां सां शामिल थिया टंडे गुलाम हैदर खां। गुलाम हुसैन लगारी बि अव्हां सां गॾु आहे, डॉक्टर कुर्बान अली बि अव्हां सां गॾु आहे, डॉक्टर कुर्बान अली भट्टी अव्हां सां गॾिजी प्रोग्राम ॿुधनि पिया, त असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। असांखे उमेद आहे त आईंदा पिणु अव्हांजो साथ ऐं सहकार जारी वसारी रहंदो। साईं, मुंहिंजा पंहिंजी दिलि में हमेशह मुहबतूं रखो ऐं कंहिंजे लाइ बि नफ़रत न रखो। यकीन करियो, तव्हां जॾहिं पंहिंजी दिलि में ॿियनि जे लाइ नेक तमनाऊं रखंदा, सुठा ख़्याल रखंदा, ॿियनि जी हमदर्दी रखंदा, त तव्हांखे जेका सुकून जी निंड ईंदी उहा अव्हांखे कॾहिं बि विसरी न सघंदी। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी दिलि खे सुकून ॾियणु चाहियो था त ॿियनि जे कमु अचो, कंहिंसां बि नफ़रत न करियो, प्यार वंडियो ऐं विरायो, कंहिंसां दोखो न करियो। इहे ॻाल्हियूं दिलि सां कनायो ऐं ध्यान सां ॿुधंदा त यकीननि ही उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेकी ज़िंदगी भर असांखे कमु ईंदियूं।

हिकु ॻाल्हि त ॿुध, मूं मूडे करे शैला गुल असां जे लाइ प्ले कयो आहे। केॾां बि न वञिजो, ॿुधंदा रहो जी एफ एम 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

प्रोग्राम आहे रस रिहाण, ऐं रस रिहाण में हिकु दफ़ो वरी अव्हांखे चवंदासीं भलीकार। रस रिहाण पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में, ऐं जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में अॼु आउं आहियां अव्हां सां मुख़ातिबु, अव्हांजो आरजे मीर मुर्कवाठो।

तलार वेझो ॻोठ आहे खालद खां निज़ामाणी, उतां खां अनू शाह, अज़हर शाह ऐं अलह ॾिने शाह हिकु दफ़ो मैसेज असांखे कयो आहे। इन ॻोठ खां पहिरीं बि असांखे हिकिड़ो मैसेज पहुतो, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। तव्हां ॿीहर असांखे मैसेज कयो आहे, कुझु साथी नवां बि में शामिल आहिनि, त साईं अनू शाह, अज़हर शाह ऐं अलह ॾिनू शाह, अवां जी वॾी महिरबानी। हीउ प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो आहे, जेतिरा दफ़ा अवां मैसेज कंदा इन प्रोग्राम में अवां खे ज़रूरु शामिल कंदासीं। ॻोठ जो नालो आहे अलाह जुड़ियो खोसो, उतां खां सजाद ऐं वसीम ऐं अव्हांजो वाल साहब आहे मोहम्मद यूसुफ खोसो। अवां मिठू कच्छी खे ॿुधण चाहियो आहे, कोशिश कंदासीं त मिठू कच्छी जेके प्रोग्राम में शामिल कयूं। अवां टे मैसेज असांखे कया आहिनि, एॾी मोहबत जो इज़हार कयो आहे ऐं अव्हांखे प्रोग्राम एॾो पसंदि पियो अचे, त असां कोशिश कंदासीं त उस्ताद मिठू कच्छी खे हिन प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल करियूं। पर थोरो अव्हांखे इंतज़ारु करणो पवंदो, थोरो अॻियां हली करे उस्ताद जो आवाज़ अव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासीं। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां असांखे यादि कयो ऐं मोहबतनि में असांखे शामिल थियण जे लाइ पंहिंजा मैसेज मोकिलिया, पंहिंजा पैगाम मोकिलिया, असां प्रोग्राम में शामिल कयो।

साईं मुंहिंजा, जेकॾहिं अव्हां बि असांखे ॿुधो पिया ऐं जेकॾहिं मैसेज करण चाहियो था, हिन प्रोग्राम में हिसो वठण चाहियो था, त तरीक़ेकार बिल्कुलु उहो साॻियो पुराणो आहे, बिल्कुलु आसान आहे। ऐं जेके नवां ॿुधंदड़ आहिनि, उन्हनि जी ख़िदमत में बि असां तरीक़ेकार अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं, त मोबाइल जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञी करे जीअं आमतौर ते असां मैसेज कंदा आहियूं, बिल्कुलु उन ई तरीक़े सां तव्हां पहिरीं लिखंदा M3I लिखण खां पोइ थोरी जॻह छॾींदा, यानी विथी जेके स्पेस चइबो आहे, उन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो या पंहिंजा नाला, ऐं उन खां पोइ जे नंबर ते मोकिलींदा मैसेज 888, यानी 8881, टे दफ़ा 8 ऐं उन खां पोइ 1, 888 ते अव्हांजा जीअं ई मैसेज असां ताईं पहुचंदा त हिन प्रोग्राम जी सूंहं ज़रूरु बणाईंदासीं। असां अव्हांजे लाइ अपील कयो आहे, अलाह ॾिने जोड़े जो ख़ूबसूरत आवाज़, सोज़ हालाईअ जी शायरी, पंहिंजे वक़्त जो हिकिड़ो यादगार गीत, हे गीत तव्हांखे कीअं लॻे थो ज़रूर ॿुधाइजो। केॾा न वञिजो, ॿुधंदा रहो GFM 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

कमर्शियल स्पॉट्स पुॼण हिकु दफ़ो वरी अव्हां खे चवंदासीं भली कार जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम आहे रस रिहाण ऐं रस रिहाण आहिस्ते आहिस्ते पहुचण लॻे थो पंहिंजी पुॼाणीअ ते पर अञा 8:25 थिया आहिनि अव्हां जो ई असांजो साथ रहंदो इनशाला ताला राति जो 9 वॻे ताईं अव्हां जा नाला बि असां ताईं पहुचनि पिया ॻोठ अलाह जुड़ियो खोसो खां सजाद खोसो वसीम ऐं मोहम्मद यूसुफ खोसो साहब जन असांखे ॿुधनि पिया अलाह ॾिन जोड़नि जी आवाज़ में सोज़ हालाईअ जी जेका शायरी असां कमर्शियल स्पॉट्स खां पहिरीं नशर कई उहा अव्हांखे तमामु घणी वणी आहे हीउ प्रोग्राम ई अव्हांजो आहे त ज़ाहिर आहे जेके प्रोग्राम में शामिल थींदड़ मौसीक़ी आहे उहा अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी हूंदी अवां फरमाइश कई मिठू कच्छी जी हिन प्रोग्राम जी आख़िरी पेशकश इनशा ताला मिठू कच्छी जो ख़ूबसूरत आवाज़ अवां जे नाम कंदासीं मिठू कच्छी ॿुधण जे लाइ अव्हांखे करणो पवंदो थोरो इंतज़ार अवां वरी असांखे मैसेज कयो अलाह जुड़े खोसे जा सजाद वसीम ऐं मोहम्मद यूसुफ साईं वॾी महिरबानी अवां असांखे यादि कयो साईं अनवर शाह हिकु दफ़ो वरी असांखे मैसेज कयो आहे ऐं कंहिं गीत ॿुधण जी फरमाइश कई आहे त अनवर साईं अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिश कंदासीं पर जेकॾहिं नथा फरमाइश पूरी करे सघूं त सुभाणे बि 7-9 ताईं असांजो शो थींदो त उन में असां कोशिश कंदासीं असांजो दोस्त ईंदो आरजे या वरी पोइ ईंदड़ सूमर ते बि आऊं अवां सां गॾु हूंदुसि त इनशाला ताला असांजा मुख़्तलिफ़ आरजेस इन्हनि वक़्तनि ते अवां सां मुखातिब थींदा त हीउ प्रोग्राम रस रिहाइण अवां जी ख़िदमत में पेश थींदो रहंदो ऐं असां अवां जी ख़िदमत में अवां जी फरमाइशूं पूरियूं कंदा रहंदासीं ॻोठ खमू जोड़े जो खां लखा ॾिनो जोड़े जो ऐं शाहिद जोड़े जो बि असां सां गॾु आहिनि त साईं अव्हां जी वॾी महिरबानी लखा ॾिना ऐं शाहिद अव्हां बि असां सां गॾु रहंदा आहियो ऐं प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो अव्हां जी वॾी महिरबानी ॻोठ कमाल खान चांग खां ख़ुदा बख़्श चांग असलम चांग ऐं सजाद चांग बि असां सां गॾु आहिनि अव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया अव्हां जी वॾी महिरबानी जेकॾहिं अव्हां बि हिन प्रोग्राम में हिसो वठणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे मैसेज करणो पवंदो मैसेज करण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे अव्हां मैसेज ऑप्शन में वञी करे लिखंदा MTI मुख़फ़ आहे ऐं शॉर्ट फॉर्म आहे मातलीअ जो MTI लिखण खां पोइ थोरी विथी पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जा नालो ऐं उन खां पोइ जंहिं नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर आहे 888 यानी 8881 ॻोठ इस्माइल वाढे खां अब्दुल सत्तार वाढो असांखे ॿुधे पियो अयाद वाढो ॿुधे पियो ज़हीर ॿुधे पियो ऐं नाना हाजी वाढो ॿुधे पियो अव्हांजी वॾी महिरबानी

मातली खां सवेरा जो असांखे मैसेज पहुतो आहे ऐं सलाम चया आहिनि ऐं हाल अहिवाल पुछियो अथनि। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे यादि कयो ऐं प्रोग्राम खे पसंदि कयो। हीउ प्रोग्राम अव्हांजो पंहिंजो आहे, बिल्कुलु काफ़ी वक़्त खां पोइ मुंहिंजो आवाज़ अव्हां GFM मातली जे लाइव स्टूडियो मां ॿुधो पिया ऐं अव्हांखे बि ख़ुशी थी आहे, असांखे बि ख़ुशी थी आहे। अव्हांजो मैसेज सवेरा असां ताईं पहुतो आहे ऐं हर सूमर ते इनशाला ताला आऊं अव्हां सां मुखातिबु थींदुसि ऐं अव्हां प्रोग्राम ॿुधंदा रहंदा त असांखे बि ख़ुशी थींदी। रस रहण प्रोग्राम इनशाला ताला 7 वॻे खां 9 वॻे ताईं अव्हांजी ख़िदमत में पेश थींदो। असांजा मुख़्तलिफ़ आर्जेज अव्हां सां मुखातिबु थींदा। अवां खे वठी था हलूं मौसीक़ी जी दुनिया में, अवां ते पहुचायूं था हिकिड़ो ख़ूबसूरत आवाज़। अवां केॾांहुं न वञिजो, ॿुधंदा रहो GFM 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

कमर्शियल स्पॉट्स पुजाण एक दफो वरी अवांखे प्रोग्राम रस रिहाण में भली कार चवंदासीं रस रिहाण वञी खिदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफएम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां 8:45:40 थिया आहिनि प्रोग्राम वञे पियो आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजी पुॼाणी जे तरफ़ ऐं अव्हां जा मैसेज बि वधीक अचण शुरू थिया आहिनि हाणे थिए थो मुक़ाबिलो पोइ ॾिसो किथे था पहुचो लॻे थो असांजा ॿुधंदड़ साथी हाणे वांदा थिया आहिनि बहरहाल इहे अव्हां जो मोहबतूं आहिनि असां अव्हां खे यादि कयूं था मातली खां सवेरा हिकु दफ़ो वरी असांखे मैसेज कयो आहे मातली खां आहे या ॻोठे जो नालो त शायदि न लिखियो अथनि सवेरा सां गॾु आहे फहमीदा पाण चयो अथनि मूंसां गॾु फहमीदा बि प्रोग्राम ॿुधे पई ऐं अव्हां इहो लिखियो आहे त आऊं पंहिंजी शायरी शामिल कयां कंहिं फनकार जे आवाज़ में त अॼु त नथा शामिल करे सघूं बाकी सुभाणे वारे शो में रब नवाज़ ख़ासि करे मूंसां गॾु आहे उनखे आऊं चवंदुसि त आर जे खे सुभाणे चवे त मुंहिंजी शायरी वारो को गीत अव्हां ताईं पहुचाए ज़रूरु सवेरा ऐं फहमीदा वांजी महिरबानी गंदे खां गुलाम कादर मल्हा असां सां गॾु आहे शहबाज मल्हा बि असां सां गॾु आहे गुलाम कादर मल्हा साईं ऐं शहबाज साईं अव्हां जी महिरबानी जो अव्हां बि असांखे ॿुधो ऐं यादि कयो मातली शहर खां ज़हीर अहमद चांडियो बि असां सां गॾु आहे सलाम चवनि था साईं वॾी महिरबानी अव्हां असां सां गॾु आहियो प्रोग्राम ॿुधो पिया अव्हां बि फरमाइश कई आहे पर अॼु कूड़ो वाइदो न कंदासीं इनशाला ताला ईंदड़ प्रोग्राम में अव्हांजी फरमाइश बि ज़रूरु पूरी कंदासीं ज़हीर अहमद साईं वॾी महिरबानी

शाहकरीम बुलड़ी खां गुलजार अली समूह असा गड आए। गुलजार साईं वरी मेहरबानी अवां सां याद कयो आहे, पहिरियों दफ़ो शायद अवां सां जे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, मैसेज कयो आहे। ही प्रोग्राम रस रिहाण काफ़ी वक़्त खां पोइ नए नाले सां असीं अवां जी ख़िदमत में पेश कयूं पिया। हिन प्रोग्राम जा कुझु ॿिया पुराणा नाला बि हुआ, पर असां नए नाले सां हिन खे दोबारा शुरू कयो आहे। असांखे उमेद आहे त अवां सभिनी ॿुधंदड़नि खे ज़रूरु पसंदि ईंदो। ॻोठ मुरीद टालपुर खां अब्दुला टालपुर साहब असां गॾु आहिनि। अब्दुला साईं वॾी महिरबानी, अवां असांखे ॿुधो पिया। उस्ताद मिठू कच्छी खे अवां ॿुधण चाहियो आहे, त इनशाला ताला हिन प्रोग्राम जे आख़िर में उस्ताद मिठू कच्छी जो आवाज़ अवां ताईं ज़रूर पहुचाईंदासीं। दंदे खां गुलाम कादर मल्हा ऐं शहबाद मल्हा हिकु दफ़ो वरी असांखे पैगाम मोकिलियो आहे, मैसेज कयो आहे त गुलाम कादर साईं ऐं शहबाद साईं वॾी महिरबानी, अवां असांखे यादि कयो। मुंहिंजे ख़्याल में वधीक ऐं वक़्तु नथो वठां, हलूं था मौसीक़ी जे तरफ़ अवां ते पहुचायूं था। हिकिड़ो ख़ूबसूरत आवाज़ अवां केॾां न वञिजो, ॿुधंदा रहो जी एफ एम 90.4 मातली सिंध जो आवाज़। बेवस निज़ामाणी शायरी ज़ीनत गुल जो आवाज़।

पंहिंजे वक़्त जो यादगार आवाज़ ज़ीनत गुल जो ख़ूबसूरत आवाज़ बेवस निज़ामाणी जी शायरी अवां जे समातन जे नाऊं कईसीं। ॻोठ शफ़ी मोहम्मद अहमदाणी में असांखे ॿुधनि पिया साथी। हीउ ॻोठ आहे गोलाड़की जे वेझो, ॻोठ शफ़ी मोहम्मद अहमदाणी लॻ गोलाड़की खां अब्दुल हफ़ीज़ साहिब, असफ़न अली ऐं अनीज़ असांखे ॿुधनि पिया। साईं अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां असांखे यादि कयो ऐं हिन प्रोग्राम में शामिल थिया, असीं अव्हां जा थोराईता आहियूं।

साईं मुंहिंजा सिंध जा काफ़ी फनकार उन्हनि पंहिंजो नालो कमायो आहे। अॼोके दौर में जेके नौजवान फनकार आहिनि हुन जी हिकिड़ी पंहिंजी महिनत आहे, पर जेके असांजा लीजेंड्स आहिनि, जेके असांजा सीनियर फनकार आहिनि, उन्हनि जूं मौसीक़ी जे हवाले सां तमामु घणियूं महिनतूं शामिल आहिनि। पोइ उहो अवामी रंग हुजे, फोक रंग हुजे या क्लासिकल रंग हुजे, उन्हनि पंहिंजे तौर ते महिनत कई ऐं तमामु घणो निभायो। उन्हनि जी महिनत जो नतीजो आहे त अॼु असांजे नवनि फनकारनि खे ॿुधो वञे थो। प्रोग्राम जे आख़िर में अव्हां ते पहुचाईंदासीं उस्ताद मिठू कच्छी जो ख़ूबसूरत आवाज़। अव्हां केॾांहुं न वञिजो, प्रोग्राम जे आख़िर ताईं उस्ताद मिठू कच्छी खे ॿुधंदा रहो।

उस्ताद मिठू कच्छी सदाहयात आवाज से अजो को प्रोग्राम रस रिहाण पहुंचे पे पंजी पुजाणी ते असी वठंदासी अवां का इजाजत अजो के प्रोग्राम के अवां ते पहुंचाण में मुंजो साथ दिनो रब नवाज खास कैली जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो में रस रिहाण प्रोग्राम इंशाला ताला वरी हाजिर थींदासीं ईंदड़ सूमर ते शाम जो 7 वगे तेस ताईं पंहिंजे मेज़बान पंहिंजे आरजे मीरपुर कवाडे खे मुर्की ॾींदा मोकल दुआ ऐं मोहबत में यादि रखिजो मोकिलायूं था अलाह नगेबान।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जो मर्जी कर ले सिंध के अंदर कोई सुबह नहीं हो सकता। इन्होंने लिख के देने को कह रहा हूँ कि पूरा सुबह सिंध से जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। बलदियाती निजाम को लोग जब ये समझ जाएं कि ये दौरा है सिंध के मफाद में नहीं है और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे एमपीएस आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस दें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो आप तसव्वुर करें कि अगर खुदा ना खास्ता ये सूबे की बात से पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप वैसे आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ, शायद ही बना दें, तो जो लोग बलदियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तस्वर कर सकते हैं कि वो क्या हासिल करेंगे हमारा। अब वो तीन चार आदमी जो मैंने कल भी कहा कि कौंसिल नहीं बन सकते यार, हसीब क्या पेंशियम की आज हसीब क्या रहेगी, एक मिशी नहीं जी सकते, ये वो बैठ कर फैसला करेंगे कि सिंह का मजीद सुबह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो वो बात करते हैं उनको कुछ शर्म आनी चाहिए, वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, दूसरे को शक्ल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और सुबह सिंध में सुबह बनाने के लिए कोई कट्ठे बिठा देता तो बात शुरू कर देते।
2: जेको वणे व करे वठो, लिखी थो ॾियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा एम पी एस घरनि मां निकिरी न पए सघिया, उहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पई ऐं तसवर कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकरंदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कोरंगीअ में हिकु तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त मोहसिन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जी सिंध में कहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि टे चार उहे ई माण्हू कनि था जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नए सूबे जी ॻाल्हि कनि त खेनि शर्म अचणु घुर्जे। जिन खे हिक ॿिए जी शिकिल पसंदि न आहे उहे कंहिं जे चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। अमरीकी सदर जी मके दिफ़ाई मुआदे जी हिमायत ते वज़ीर आज़म पारां ट्रंप जी वाखाण। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त मका गॾियल दिफ़ाई मुआदे ते अमरीकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो। ॾखिण एशिया में एटमी तबाहीअ जो ख़तरो टारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो। अमान जी रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथां हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्तनि जी बि तस्दीक। मीडिया फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त जेकॾहिं आबनाह हुरमस खोलण जी कोशिशुनि में ओमान रुकावट बणियो त अमरीका हुन ते सख़्त बमबारी कंदो। अमरीका वटि अञा बि हथियारनि जा वसी ज़खीरा मौजूद आहिनि। अमरीका हिन वक़्त ताईं जेतिरा हथियार इस्तेमाल कया उहे मौजूद हथियारनि जी मजमूई ज़खीरे जे भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करण ऐं अछो झंडो ऊचो करणु घुर्जे। ईरान सां जारी तकरार ख़तम करण लाइ का तकड़ न आहे। मुंहिंजी इंतिज़ामिया ईरान जे पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्ते लाइ हिकु बैक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे।

0: इस्लामाबाद में MOU ते सही थियण खां पोइ ईरान जी सख़्त गीर क़यादत गुज़िरियल ॿिनि महीननि दौरान वॾी जंग जी तयारीअ ते ध्यानु ॾिनो। उन तयारीअ जे सिलसिले में पाकिस्तान इनकलाब खे मुल्क जी फ़ौज ते वधीक कंट्रोल ॾिनो वियो, जॾहिं त अहम उहिदनि ते इराक जंग जो तजुर्बो रखंदड़ ऐं माज़ीअ जी अंदरूनी क्रैकडाउन्स में शामिल फ़ौजी आफ़िसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन खे बि वधायो वियो। मिज़ाइलनि ऐं ड्रोन्स जी पैदावार में तेज़ी आंदी वई। उन सां गॾु ईरानी क़यादत आबनाए हुर्मुज़ ते पंहिंजी गिरफ़्त मज़बूत करण लाइ सामूंडी जहाज़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं ऐं जंग जो दायरो ॻाढ़े समुंड ताईं वधायो। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जी सुधारनि ऐं इस्लामाबाद IT पार्क बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खे शहरनि लाइ आसान, असराइती ऐं जदीद डिजिटल ख़िदमतूं फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहरनि खे बर वक़्त शफ़ाफ़ ऐं आसान डिजिटल ख़िदमतूं फराहम करण लाइ समूरनि लाॻापियल इदारनि खे गॾिजी कम करणो पवंदो। शहरनि खे सरकारी ख़िदमतूं हासिल करण में सहूलियत फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में उथारण घुर्जनि। अणिवीह आईनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवोल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, अवेक्यू ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अणिवीह तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सानु थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी भार ख़तम करे ख़र्च 190 खरब रुपियनि मां घटाए 130 खरब रुपया कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवे शहर मातली में अवान जो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन के सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची की मशहूर डॉक्टरानी औलाद जो न थियण औरतन की मखसूस बीमारियों जो इलाज बार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड की माहिर डॉक्टरानी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम की खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐ फार्मेसी की सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 3310 41 843 842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत
9: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
6: जी हा 3315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।